0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
2: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
3: He has seen history break.

0: On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
3: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
9: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
10: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
1: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
11: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
12: The Ayatollah Khamenei is gone.
13: There has been a missile attack right behind me
14: and we need to rush into a shelter.
15: Heading there.
16: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
1: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
17: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
18: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday. How?
17: The show that sets the prime time agenda.
18: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
17: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
19: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
20: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
21: अरे मेरे राजा,
22: सबका राजा आग प्योर मसाला।
23: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
24: हर सेक्टर, हर स्टेट,

0: All right, our big focus at 8 a.m. The politics over paper leaks is set to intensify in Parliament today. After a debate that ran late into the night, the House is expected to resume discussion on the anti-paper leak bill at noon, with Leader of Opposition Rahul Gandhi likely to intervene around 12:30 p.m., we're told. Now, the government says that this legislation closes loopholes that have allowed examination fraud to flourish for years. So basically, the government is pitching tougher punishments, as we've been covering, faster investigations, time-bound trials, while also arguing that paper leaks were hardly unique to the present and pointing to cases during the UPA years. The opposition, however, they are asking a different question. The opposition is asking, if the problem has persisted across governments, what makes this bill different? It's called the legislation an eyewash, arguing that accountability for recent failures cannot be replaced by promises of future reform. In fact, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra also used the debate to question the police response to student protests, alleging excessive force, including the alleged use of pellet guns, asking why students demanding answers were treated as a law and order challenge. Before we get you the lowdown and what to expect today, listen in to these crucial political reactions.
1: To ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. Or chahe wo special task force ho, chahe wo central jaise, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police parsi is conducting.
2: Jis NTA ke dwara 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है. क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है. मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की. आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा.
3: अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन. बट व्हाइल नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक लॉ, अ वेरी रोबस्ट लॉ विच टुडे इज बीइंग इवन मोर फॉर्मिडेबल, all that the opposition did was chase political opportunism. Adhyaksh ji, fark saaf hai. Fark keval sarkar ka nahi, fark soch ka bhi hai. UPA ka mantra hai delay, deflect and deny. Modi ka mantra hai detect, decide and deliver.
4: What does it say about the state of affairs of the current government? And then comes the ultimate irony. A government that speaks tirelessly about national security has in some instances reportedly had to resort to extraordinary security arrangements, including military logistics and helicopters being used of Indian Armed Forces and Indian Air Forces to transport examination papers. Think about it, sir. Think about it for a moment. If a question papers requires the level of protection normally reserved for matters of national security, What does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. Chairman sir, the youth of India did not ask for helicopters. They asked for honesty. They did not ask for empty slogans. They asked to secure their examinations. They didn't ask for publicity. They asked for fairness.
5: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं, हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे, पूरा देश पूछ रहा है।
6: की इस बात का है कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के जितने भी स्पीच आप कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के सारे स्पीच सुन लीजिए, किसी ने भी इतना महत्वपूर्ण जो बिल पे चर्चा हो रही है, बिल पे किसी ने नहीं बोला। इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं।
7: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने 2 बजे से डिबेट शुरू की है, ये बिल बड़ा गंभीर विषय के ऊपर है, लेकिन विपक्ष के इतने माननीय सांसदों ने इस विषय पर चर्चा की, एक भी वक्ता अभी तक बिल की गंभीरता पे, बिल के विषय पर एक शब्द नहीं बोला। सबके सब पूरी तरीके से विषयहीन है। मुझे पता नहीं बिल पढ़ा भी है कि नहीं, बिल का विषय समझते भी है कि नहीं, एक भी वक्ता ने बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला।
8: जो प्रियंका जी ने फैक्ट्स रखे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री को जवाब देने की ज़रूरत है, गृह मंत्री को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जिस तरह से देश के छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ, हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ, टियर गैस, बल्कि AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को गलत तरीके से मारा गया, तो कम से कम जवाब और इसकी वजह क्या है, इसकी ऑर्डर्स किसने दिए, इसका स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने देना उचित है।
9: When the students were protesting, when it has

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
8: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। फॉर द एलीट,
11: ही हैज ट्रैक द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
12: This location from Tel Aviv
11: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
13: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
14: The Ayatollah Khamenei is gone.
15: There has been a missile attack right behind me,
16: and we need to rush into a shelter.
17: Heading there.
18: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: rights and how the examination can be, system can be changed overall. It would be, of course, as I mentioned, all eyes would be on Leader of Opposition Rahul Gandhi and Dr. Jitendra Singh, who will be speaking later in the day on this particular bill.
1: We'll, of course, track all the finer details with you, Aishwarya. Thanks so much. Well, the political fallout from the anti-Paper League protests is far from over. The Cockroach Janata Party has warned that it could return to the streets, accusing the government of failing to honour assurances that criminal cases against protesters would be withdrawn. The CJP further said that the Supreme Court's interim order allowing existing investigations to continue cannot be used as a reason to deny the commitment made to students. Meanwhile, several NDA-ruled states have begun steps to withdraw cases linked to the protests, with Bengal now joining Bihar, Assam and Maharashtra. In fact, the Bengal government announced that no coercive action will be taken against students who participated in the protests, clarifying that the protection will not apply to persons with criminal records.
2: जैसे आपको पता है सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में नहीं कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट्स है गवर्नमेंट के स्टेट्स है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे दिल्ली में होगा दूसरे स्टेट्स में भी होगा एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे
3: एकदम ठीक बोला गया सीजेपी जो बोला दिल्ली से जो लोग जो स्टूडेंट आंदोलन किया वो आंदोलन के खिलाफ उनका खिलाफ जो जो कार्रवाई डिफरेंट गवर्नमेंट शुरू किया वो बंद होना चाहिए ये वो सीजेपी का एकदम ठीक स्टैंड है
1: All right, let's turn our attention now to news just coming in. The political row over the anti-Paper League protests has now taken another turn. Just a day after BJP MP Kangana Ranaut sparked outrage with her remarks about women who participated in the student protests in Delhi and the general protesters as well, the Congress has hit back sharply. We've got another reaction coming in from the Congress. This time it's senior Congress leader Vijay Vadettiwar accusing Kangana Ranaut of using language that demeans women and lowers the quality of political discourse, saying public representatives must choose their words responsibly. In fact, Mr. Vijay Vadettiwar has said a person whose thoughts are like a gutter and whose words carry such filth has no right to call others a gutter. You must note that Kangana Ranaut's comments have drawn criticism after she questioned the character and motives of women protesters. She used absolutely derogatory language, disparaging remarks, prompting the opposition to accuse the BJP of attempting to discredit a movement led by students rather than responding to the issues they had raised. Here are the reactions you cannot ignore.
4: अब जिनके विचार ही गटर जैसे हैं, जिनके विचारों से गटर जैसी दुर्गंधी आती है, उस बारे में हम क्या बात करें? जिनके विचार जब मुंह से निकलते हैं, तो गटर जैसी बात आती है, तो दूसरों को गटर कहने के लिए उनको कोई ज्यादा मुआवजा देने की जरूरत नहीं तजों को देने की जरूरत नहीं है वो उनका पूरा इतिहास महिला है करके हम सम्मान करते हैं पर किसी महिला के लिए जो शब्द का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है जो वहां पे जैन जी के बारे में युवा लड़कियों के बारे में जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो दूसरों को लागू नहीं होता वो खुद को लागू होता है
5: I was wondering this statement of Kangana Ranaut because it is another addition to her stupid, foolish statements. And Kangana Ranaut, I don't know in which world she lives. There was very huge student protests, and all, even a major section of BJP leaders understood the mood of the situation, mood of the nation. Then this. Politically migrated people without any substance, you know, जो just मतलब क्या प्रधानमंत्री को जय जय बोलने के जो पॉलिटिक्स में आया
1: Ashwarya Jain.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सब

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
2: Just few inches away is POK.
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
3: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
5: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
6: This location from Tel Aviv
5: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
7: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
8: The Ayatollah Khamenei is gone.
9: There has been a missile attack right behind you,
10: and we need to rush into a shelter.
11: Heading there.
12: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
5: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits.

0: proceedings will proceed on August 3.
1: Right, thank you so much. We'll put all eyes on that case that's coming up on the 3rd of August. Let's just get you more news coming in, and this is in regard to the monsoon session that's expected to be resuming today. But as far as that political dispute is concerned, that's emerged over the exam reform task force. Yesterday, we had Priyanka Gandhi Vadra mocking the inclusion of the IIT Madras director, Professor Kamakoti, and questioning the panel's composition. Now, the BJP came out, in fact, condemning the remarks as unacceptable, defending, his credentials and criticizing the commentary as misleading. Professor Kamakoti, a distinguished computer science professor, he led the Shakti microprocessor project and has served as the director of IIT Madras since 2022.
2: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ
3: अरे बात
4: फिर चिल्लाएंगे
2: एक एक्स आईबी चीफ एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी
5: लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटि जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं
6: श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा स्पीच was a toxic, pungent, directionless rant, devoid of any constructive content. Most condemnable was the way in which Priyanka Gandhi Vadra, who is a poster child of undeserved entitlement, having the temerity to mock and malign a distinguished academic. The current IIT director, unlike Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi, by his sincerity and dint of his hard work, has distinguished himself.
7: इस तरीके से कल डिबेट पूरे पेपर लीक मामले में चला उसमें उसके बाद बीजेपी के तमाम जो एमपीस थे उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी बिल के बारे में तो बात किया ही नहीं वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं
8: देखिए हम वो बात करते हैं जो लोगों के मुद्दे होते हैं अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनका क्या बयान था सम्मानित नहीं किया उन्होंने बिल्कुल बानों के रेपिस्ट को इसमें झूठ क्या है क्या पूरे देश को शिक्षा मंत्री ऐसा दोगे पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है आपकी नीति क्या है और नियत क्या है आपके दोनों में फर्क है तो पक्ष का काम है मुद्दे उठाना तो पक्ष मुद्दे उठाएगा प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बोला है कोई ऐसी बात नहीं बोला जो किसी को पता ना हो पूरी पब्लिक डोमेन में है वो बात तो बात तो किस बात से है उसका जवाब दे
1: And Professor Kamakoti, part of that center's new reconstitution education reform panel, has spoken with NDTV's Padma Joshi on this row. Let's listen in to what he had to say. V. Kamakoti, director of IIT Madras and now a member of that high-powered panel on exam reforms, is joining us live. Sir, thanks very much for speaking to us. Just tell the people, what do you think is the reason that you have been chosen to be on this panel for the exam system rehaul?
9: Oh, Padma ji, namaste.
1: Namaste.
9: So the objective of this panel is a single agenda. That we need to come out with a framework that will ensure transparent, robust, and leak-proof examination. And IITs have been involved in this examination for quite some time. We have been conducting one of the largest examinations in the past and for several decades now. And we have seen the growth of the examination in terms of scale. When I wrote the JEE in 1985, there were 5,000 people who wrote it. Today, we have 1.5 million aspirants for that examination. And over a period of time, we have seen the transition from a paper and pen subject to subjective papers to optical sensor recognizing sheets. And then we moved to image processing, and then we have come to computer-based testing. And so we have seen all the forms. We have adopted so many technologies. We have also seen, you know, usage of other type of technologies. So if you have 1.5 million people, identity checking, biometric, and also, you know, handheld metal detectors, how do we stop people from bringing devices inside in this age of electronic devices, etc.? So many, many new technologies we have adopted. And we have seen this entire exam reforms. And so I think my contribution in this particular committee would be to bring out what are the do's and don'ts and where we need to be careful and where extra, you know, protections can be and where technology can be used specifically from the implementation point of view.
1: Now, as we speak of that political battle over the student protests and the police action, that's only intensifying. The Kokra Janata Party has warned of a fresh round of protests if the government fails to withdraw its FIRs against protesters. The CGP has further added that the Supreme Court's interim order following existing investigations to continue cannot be used as a reason to deny the commitment made in the first place to the students. Meanwhile, several NDA-ruled states have begun steps to withdraw cases linked to the protests. With West Bengal now joining Bihar, Assam and Maharashtra, the Bengal government announced that no coercive action will be taken against students who participated in the protests, clarifying that the protection will not apply to persons with criminal records. And that is something that has been made very clear.
3: जैसे आपको पता है सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में नहीं कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के स्टेट है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे दिल्ली में होगा दूसरे स्टेट्स में भी होगा एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे
4: एकदम ठीक बोला गया सीजेपी जो बोला दिल्ली से जो लोग जो स्टूडेंट आंदोलन किया वो आंदोलन के खिलाफ उनका खिलाफ जो जो कार्रवाई डिफरेंट गवर्नमेंट शुरू किया वो बंद होना चाहिए ये वो सीजेपी का एकदम ठीक स्टैंड है
1: And of course, here we have the CJP warning of protest 2.0. In fact, they are saying that, you know, the FIRs need to be dropped. The honor that was promised, this is why the talks were taking place. And this is after Bihar, Assam, Maharashtra, West Bengal have moved to drop those FIRs. Let's just move on now as far as actor turned politician Kangana Ranaut is concerned. She sparked a fresh controversy after calling Gen Z generation gutter. This is in a series of remarks that targeted the student-led protests. She's questioned the upbringing of the protesters, saying she had never seen so much ugliness in one place and made controversial comments specifically about women, Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and can't be homemakers. The Kokra Janata Party has hit back sharply. The CJP spokesperson Saurav Ghatas dismissed those remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take her seriously. Meanwhile, BJP MP, Mr. Gupta there, has backed Kangana Ranaut, saying that she's absolutely right. Kangana Ranaut went on to say that those reels and videos that emerged on social media made her puke. They were puke-inducing videos. Listen in.
10: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है वो पॉलिटिशियन है नेता बन गई है उनके तो कुछ वीडियोज भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के, तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था।
11: माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो अभद्र गालियां जिन छात्रों ने दिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो छात्र छात्राएं ने अपनी माँ के कोख को शर्मसार किया, जिस कोख से वो उन्हें जन्म लिया। हर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कारी और एक मर्यादित इंसान के रूप में इस धरती पे देखना चाहती है।
12: अब जिनके विचार ही गटर जैसे हैं, जिनके विचारों से गटर जैसी दुर्गंधी आती है, उस बारे में हम क्या बात करें? जिनके विचार जब मुंह से निकलते हैं तो गटर जैसी बात आती है, तो दूसरों को गटर कहने के लिए उनको कोई ज्यादा मुआवजा देने की जरूरत नहीं, तजुर्बो देने की जरूरत नहीं है। वो उनका पूरा इतिहास महिला है करके हम सम्मान करते हैं, पर किसी महिला के लिए जो शब्द का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, जो वहां पे जैन जी के बारे में, युवा लड़कियों के बारे में जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो दूसरों को लागू नहीं होता, वो खुद को लागू होता है।
1: Right, let's just listen into the actor turned politician and the flack that she's been getting for those comments, calling those reels and videos which are raising concerns about, what the protesters were going through, what the students have been going through. She called them puke-inducing videos. Listen in.
13: आप हमारे 75-year-old प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे रहे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16-year-old से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
1: Who's birthing them, who's raising them is the question that Kangana has put out. In fact, comparing, saying that you're calling yourself cockroaches, but I have started looking like cockroaches as well. That is what the actor turned politician had to say. We're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
2: Just few inches away is POK.
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and

0: बनाया। अभी शिक्षा जो है एग्ज़ाम जो है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी। एनटीए के 47 लोगों को निकाल दिया, एनटीए के शिक्षण विभाग के सचिव को निकाल दिया, शिक्षण विभाग के महासंचालक को निकाल दिया। कितनी बड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने की और इन विद्यार्थियों को, छात्रों को, उनके मांगों को प्राथमिकता दी, उनके मांगों को तवज्जा दिया और ये शिक्षण विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लिया। उन्होंने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया। इतना बड़ा निर्णय लिया क्यों? क्योंकि ये छात्र देश का भविष्य है।
1: लेकिन क्या जिस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा गया, जिस तरीके से डंडे चलाए गए दिल्ली में, तो क्या ये सही था?
0: नहीं, इसका समर्थन हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन कैसे परिस्थिति में ये हुआ इसकी जांच होगी। सीबीआई जांच कर रही है, प्रधानमंत्री खुद पर उस पर ध्यान देकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी तो जांच होगी। लेकिन जो राजनीति हो रही है,
1: राहुल गांधी भी गए थे प्रधानमंत्री आवास के सामने, वहां पर भी आंदोलन हुआ, वहां पे भी उनको उठाया गया वहां से।
0: देखिए, राहुल गांधी ये विपक्ष के नेता है और इंदिरा जी गांधी की हत्या हुई, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, दिल्ली में हुई, उनके निवास स्थान पर हुई, तब जाके एसपीजी कानून बन गया और प्रधानमंत्री निवास के आजू बाजू में एक हाई सिक्योरिटी जोन बन गया, वहाँ कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी जी को पता है। लेकिन फिर ये आंदोलन वहाँ क्यों गया? ये आंदोलनकारी जंतर मंतर पे थे, अभी उनको यहाँ पर आंदोलन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ये बहुत बड़ी खतरनाक साजिश हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के निवास एक सेंसिटिव जोन होता है और प्रधानमंत्री एक देश का, एक व्यक्ति कोई भी हो लेकिन देश का प्रधानमंत्री है, वहाँ पर ऐसा कानून व्यवस्था बिगाड़ना ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है। और मुझे तो लगता है वो बार बार बांग्लादेश का नाम लेते थे, नेपाल का नाम लेते थे, श्रीलंका का नाम लेते थे। क्या उनकी ऐसी मंशा थी? क्या देश में अराजकता फैला है? युवाओं का छात्रों का आंदोलन के आड़ से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश वो कर रहे थे?
1: लेकिन जिस
0: ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ।
1: विरोधकों का आरोप है कि सरकार ने काफी अत्याचार किया विद्यार्थियों के ऊपर।
0: देखिए, जिन्होंने जो पुलिस अत्याचार हुआ होगा, लाठीचार्ज हुआ होगा, उसकी तो जांच होगी। अभी प्रधानमंत्री जी खुद इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, उन्होंने खुद ही इस पर गंभीरता से लिया हुआ है। लेकिन वो तो होगा ही, जो गलत होगा उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन ये छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश जिन्होंने की, आज केजरीवाल बता रहे कि ये राहुल गांधी अपना आंदोलन कर रहे क्रेडिट लेने के लिए, सोनम वांगचुंग की पत्नी उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नौटंकी शुरू है, यहाँ पर यहाँ से कोई जाता है वहाँ पर वो तो आग लगाने की बात कर रहे हैं, बोले अभी आग लग गई उसको बुझने मत दो। ये क्या है? ये देश को जलाने का मकसद है इनका, देश में आए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मकसद है। ऐसे नहीं जीत सकते, ऐसे लोगों के वोटों से नहीं जीत सकते, तो ऐसे जीतने का सपना देख रहे हैं।
1: तुलना तो आनी बानी के
0: अभी अभी तो आनी बानी में तो सबको जेल में ठूस दिया था, पूरे सब बेकसूर लोगों को आनी बानी में ठूस दिया था और सिखों का शिरकान कर दिया उस वक्त। तब तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि एक ही माइकलाल हिंदुदेव सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सिखों को बचाया। तो आनी बानी लागने

0: लगाने वाले, सिखों की हत्या करने वाले, इनको क्या बोलने का नैतिक अधिकार है? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ये तो हम, मैंने पहले कहा कि छात्रों के साथ हमारी संवेदना है, ये तो उनके नीट की परीक्षा के पेपर लीक होना उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन वो सारे को जेल, सारों को सारे जेल के अंदर है। मोदी जी ने कहा एक को भी नहीं बख्शेंगे हम, ठोक देंगे उनको, अंदर डाल दिया है और उनको सजा होगी, कड़ी सजा होगी। लेकिन ये क्या है, यहाँ खाली झूठे मूठे श्रेयवाद की लड़ाई शुरू है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या श्रेय लेने के लिए भी वो इंडिया इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है, उनको भी उनके अंदर भी फटाफूटी है सब।
1: महाराष्ट्र से दो बड़े नेता गए थे दिल्ली, एक गए थे उद्धव ठाकरे की जो जंतर मंतर मंच पे जाकर के उन्होंने भाषण किया, और दूसरे बड़े नेता गए थे शरद पवार जो जंतर मंतर भी गए और प्रधानमंत्री जी से भी मिले, आप कैसे देखते हैं इन दोनों?
0: ये जंतर मंतर में गए और आग लगाने की भाषा करी, बोले अभी आग लग गई है इसको बुझने मत दो, सुझाव दो, मांग करो कि ये छात्रों को न्याय कैसे मिले, ये छात्र हमारा आग लगाने के लिए नहीं, हमारा देश का भविष्य बनाने के लिए, ये जो छात्र है युवा पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं, ये तो बोल रहे आग लगा दो, क्योंकि इनको जनता ने ठुकरा दिया है, जनता के अदालत में हार गए हैं, अभी अपनी पार्टी बचाने के लिए उनके प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे। पवार साहब तो गए वहाँ पर आंदोलनकारियों को भी मिले और प्रधानमंत्री जी के पास भी गए, और उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं ये
1: सुझाव कुछ दिए
0: ये छात्रों को न्याय मिले, उनसे वो तो एक ही इंडिया अलायंस में, तो पवार साहब से छिकना चाहिए बाकी लोगों ने।
1: अच्छा, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और पूरे देश में चर्चा रही शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर की, आप काफ़ी दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, आपके पुत्र और खासदार जो है श्रीकांत शिंदे वो भी इसकी तैयारी कर रहे थे, क्या ये अल्पविराम है या और ऑपरेशन टाइगर के और भी कुछ हिस्से?
0: ये ऑपरेशन टाइगर ये सब पत्रकारों के ही सवाल है, पत्रकारों को ही जवाब है। देखिए हम किसी को तोड़ने नहीं जाते, हम जोड़ने वाले हैं, हम बिगाड़ने वाले नहीं, हम बनाने वाले हैं। हमने 2022 में जो उठाव किया था हम किसी के सरकार को तोड़ा नहीं, हम किसी के सत्ता लेकर चले नहीं गए, हम इस्तीफा देकर गए, हम मंत्री पद छोड़ कर गए, मंत्री पद त्याग कर गए, लेकिन हमें जनता ने स्वीकारा क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे लेके गए, हम हिंदुत्व के विचार को आगे लेके गए, हम डेवलपमेंट का एजेंडा का आगे लेके गए, और कुर्सी के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग कर कुर्सी हथियाई कई लोगों ने, सत्ता के लिए ये सब छोड़ दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आते हैं हमारे पास हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जिनके पास से आते हैं उनके पास जब होते हैं तो अच्छे होते हैं, जब छोड़ते हैं तो बुरे हो जाते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: was in the manifesto of the BJP, and it was also one of the important agenda on which the BJP tried to gain votes. They also won the elections. And then if we talk about the whatever has happened in the past few weeks as well, that definitely raises questions as to how it has been functioning and how actually serious the BJP is as far as this entire issue is concerned, is what Samajwadi Party has been saying. And we did speak to many of the MPs from Samajwadi Party. They were very much clear, Vasudha, that no matter what, yes, we are raising issues issue of the NEET in the parliament, but definitely we'll be also raising the issue as far as Ram Mandir alleged donation theft is concerned. Now needs to be seen that what happens next, because they want a debate and discussion to be held in the parliament. However, the government is maintaining its stance that already SIT has been formed and the action has already been taken on all those who are accused, and an investigation is still underway.
1: Right. Thank you, Deshri, for joining us with those details. There is another controversy that has erupted now, and this is with regard to IIT Madras Director V. Kamakoti. Professor V. Kamakoti is seen as one of the most important reputed brains on computer science, and now he's become the subject of a political dispute between the opposition and the ruling party, with opposition MP, specifically Priyanka Gandhi, raising questions over the composition of the high-power task force that was constituted by the government 3 days ago. It's going to be led by Nandan Neel Kenny, seen as extremely efficient technocrat, but it also has Professor V. Kamakoti, who is amongst the best brains of the country with regard to computer science. He's credited with holding IITJ examinations without any discrepancies and lapses. But Priyanka Gandhi has questioned his credentials, saying that he's somebody who believes in Gaumutra science. Professor V. Kamakoti, in some of his earlier videos, has talked about the importance of cow urine as having some medical properties, and this has become a subject of political dispute, with Anurag Thakur of the BJP now contrasting or opposing or lashing out at Priyanka Gandhi, saying that this is an insult to Professor V. Kamakoti, and academic with huge credentials is now being insulted by the Congress party. That's the big claim that he has made. This is playing out politically, with both opposition and ruling parties sparring at each other over the composition of the task force. Now let's take a look at some reactions.
2: Is nahi committee mein to ek ex IB chief,
3: are baat
4: fir chillayenge,
2: ek ex IB chief, ek IT company ke malik और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
5: लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर IIT मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटि जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं।
6: श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा स्पीच वाज अ टॉक्सिक पंजेंट directionless rant, devoid of any constructive content. Most condemnable was the way in which Priyanka Gandhi Vadra, who is a poster child of undeserved entitlement, having the temerity to mock and malign a distinguished academic. The current IIT director, unlike Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi, by his sincerity and dint of his hard work, has distinguished himself.
7: जिस तरीके से कल डिबेट पूरे पेपर लीक मामले में चला, उसमें उसके बाद बीजेपी के तमाम जो एमपीस थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी बिल के बारे में तो बात की ही नहीं, वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
8: देखिए, हम वो बात करते हैं जो लोगों के मुद्दे होते हैं। अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका क्या बयान था? सम्मानित नहीं किया उन्होंने बिल्कुल बानों के रेपिस्ट को। इसमें झूठ क्या है? क्या पूरे देश को शिक्षा मंत्री ऐसा दोगे? पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, आपकी नीति क्या है और नियत क्या है? आपके दोनों में फर्क है। तो पक्ष का काम है मुद्दे उठाना, तो पक्ष मुद्दे उठाएगा। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बोला है, कोई ऐसी बात नहीं बोला जो किसी को पता ना हो, पूरी पब्लिक डोमेन में है वो बात। तो बात तक किस बात से है, उसका जवाब दें।
9: कमेंट्स मेड ऑन IIT डायरेक्टर कामाकोटि, इट्स वेरी अनकॉल्ड फॉर। you should look at his track record. He has done something path-breaking in IIT Madras. Not just in the artificial intelligence or new age technologies, but for the last 5 to 10 years, IIT Madras has turned his vision in such a way that they started investing in a lot of startups. And they all became very, very good valued companies.
1: Well, so Professor V. Kamakoti has become the latest flashpoint between the opposition and the ruling party, with the opposition questioning his inclusion in the task force, saying that he's somebody who's not a man of science, while the ruling party has made it very clear that it's his academic credentials matter, and that the opposition, especially Priyanka Gandhi, Congress MP, is only trying to degrade his credentials. Moving on to other stories now. Talking about controversies, Kangana Ranaut, BJP MP, has now landed herself into another controversy. While criticizing Gen Z as Generation Gutter, she has questioned the upbringing of young people in this country. She has also called some of them ugly, to be even homemakers. Now, this has given a space to another flashpoint now, with the CJP itself responding to this. CJP spokesperson Saurav Das has said that not even the BJP takes Kangana Ranaut seriously, but others have either supported her. There are also people who have lashed out at her, who have completely rejected her claims. Take a look at some reactions.
3: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था.
4: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है. गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में, सबको पता है. दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं. तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है. और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है. लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया.
10: माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो अभद्र गालियां जिन छात्रों ने दिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो छात्र छात्राएं ने अपनी माँ के कोक को शर्मसार किया, जिस कोक से वो उन्हें जन्म लिया. हर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कारी और एक मर्यादित इंसान के रूप में इस धरती पे देखना चाहती है.
11: जिनके विचार ही गटर जैसे हैं, जिनके विचारों से गटर जैसी दुर्गंधी आती है, उस बारे में हम क्या बात करें. जिनके विचार जब मुंह से निकलते तो गटर जैसी बात आती है, तो दूसरों को गटर कहने के लिए उनको कोई ज्यादा मुआवजा देने की जरूरत नहीं, तजुर्बो देने की जरूरत नहीं है. वो उनका पूरा इतिहास महिला है करके हम सम्मान करते हैं, पर किसी महिला के लिए जो शब्द का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, जो वहां पे जैन जी के बारे में, युवा लड़कियों के बारे में जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो दूसरों को लागू नहीं होता, वो खुद को लागू होता है.
12: Wondering this statement of Kangana Ranaut, because it's another addition to her stupid foolish statements. And Kangana Ranaut, I don't know in which world she lives. There was very huge student protests, and all, even a major section of BJP leaders understood the mood of the situation, mood of the nation. Then these politically migrated people without any substance, you know, Joe, just मतलब क्या प्रधानमंत्री को जय जय बोलने के जो पॉलिटिशियन आया,
7: कंगना रनौत ने जिस तरीके की स्टोरी डाली, गटर लाइक स्टूडेंट्स, गटर लाइक अप्रोच कहा गया,
8: ये उसकी मानसिकता दर्शाता है। उनकी जैसी मानसिकता है वैसे उनके मन से बात बाहर आता है।
1: कंगना रनौत, बीजेपी एमपी, कॉलिंग जेन सी गटर जनरेशन कंप्लीटली अनजस्टिफाइड, कंप्लीटली अनफेयर। लिसन, दीज आर आवर यंगस्टर्स, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वी नीड टू एंगेज विद देम, वी नीड टू हैव अ डायलॉग विद देम, इट कैन नॉट स्टार्ट बाय अब्यूजिंग देम, दे आस्क्ड फॉर समथिंग दैट रियली पेन देम, दैट रियली पुट देम इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू वन ऑफ इट्स टॉप हैवी वेट्स रिजाइनिंग। Now the solution is to move forward, to take part in the discussion that's underway, to bring in laws and to bring in policies that deter criminals from doing what they've been doing, exam paper leaks. The solution clearly is not calling our young names, and that is something probably a lot of MPs have to understand, but that's also probably something that the opposition needs to understand. Calling somebody a Gaumutra scientist also doesn't stand well, because at the end of the day, these are our scientists, these are our achievers, and there needs to be respect in the kind of language that we use. Let's first take a look at what Kangana Ranaut said, which made her the center of this political dispute.
13: आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे रहे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
1: Well, now, even as we talk about controversies that have come to the fore with regard to some statements that have been made by some BJP MPs and also by opposition MPs, now, the BJP, the ruling party, has initiated a massive outreach to Gen Z. We saw a lot of NDA MPs talk in Gen Z logo yesterday. Now, the BJP has also released a video in which it talks about there are youngsters featured in this video and they're sitting in a gym, they're talking to their instructor, they're talking about how the Jantar Mantar protest went by, and the instructor does tell them how India has changed under Prime Minister Modi. This is an attempt by the BJP to connect with youngsters of the country, possibly in a bid to remind them what all it thinks has happened and changed under Prime Minister Modi. Let's take a look at some reactions.
14: देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में।
15: क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
14: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको।
1: It's not just the BJP that's reaching out to youngsters or Gen Z. There are other parties as well doing the same. Remember that Gen Z is the strongest potential of our demographic strength. It's an influential demographic. It's an influential bloc. Many of them have not voted as yet, but they're all set to vote by 2029. It's not just about voting. It's also about the social milieu, the socio-political discourse that they are sort of leading. Let's take a look at how parties have reacted to their outreach to Gen Z.
16: देखिए, मैं ये कहूँगा जैन जी जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो इस टाइम पूरा देश जान गया है जैन जी को, उनकी जनरेशन को, किस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली उनकी जो रही है और उनके काम के सिलसिले में। लेकिन उनकी जैन जी की ताकत इसलिए देखने को मिली कि जिसको बड़ी बड़ी जनता बड़े नहीं झुका पाए सरकार को, लेकिन जैन जी के आगे सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और उनकी एकता, उनका इत्तेहाद, उनकी नॉलेज और देश के लिए समर्पित होना, ये उनकी बड़ी ताकत।
17: देखो, देश के बच्चों ने ये तो बता दिया कि हम इस देश में हैं और इस देश में बड़ी संख्या में हैं और हमारे खिलाफ जब निर्णय होंगे तो इसी तरीके का आपको विरोध सहना पड़ेगा, इसलिए आज उनकी चर्चा हो रही है। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है उनके बारे में, उन्होंने आगे भी उन्होंने इस सरकार को ये बताया है कि जो आप करोगे हम उन चीज़ों का विरोध करेंगे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
6: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
9: The Ayatollah Khamenei is gone.
10: There has been a missile attack right behind you,
11: and we need to rush into a shelter.
12: Heading there.
13: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
6: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
14: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
15: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
3: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind you,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी और वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: The protest comes as the opposition steps up its attack on the government over the alleged irregularities.
1: कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है।
2: ये सभी पूरा देश ये मुद्दा जानता है कि जिस तरह राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो जागरी और हजारों करोड़ का मामला है, ये कोई मामूली चोरी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे देशवासियों की आस्था की चोरी है, उनकी श्रद्धा की चोरी है, उनकी भावनाओं की कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है।
3: पूरा देश के करोड़ों करोड़ों आस्था से जुड़े जो प्रभु श्री राम थे, उन्होंने न जाने कितना सोना चांदी हीरा जमीन सब चढ़ा।
0: द राम मंदिर इशू व्हिच इज नॉट बीन ग्रांटेड फॉर नाउ, बट यू सी द समाजवादी एमपीज अपिंग द एंटी व्हेन इट कम्स टू द इशू। ऐश्वर्या स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू कम बैक टू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ। द मॉनसून सेशन एज वी ऑल नो इज अंडरवे, टुडे इज डे 8 एंड देयर इज अनदर पॉलिटिकल डिस्प्यूट दैट हैज इमर्ज ओवर द एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स विद कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी मॉकिंग द इंक्लूजन ऑफ आईआईटी मद्रास डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी एंड क्वेश्चनिंग द पैनल्स कंपोजिशन। BJP MP Anurag Thakur condemned the remarks as unacceptable, defending Kamakoti's academic credentials and criticizing Gandhi's commentary as misleading. Kamakoti, a distinguished computer science professor, has led the Shakti microprocessor project and has served as the director of IIT Madras since 2022. A lot of reactions coming in on what Priyanka Gandhi said.
4: Is nayi committee mein to ek ex-IB chief.
5: अरे बात
6: फिर चिल्लाएंगे।
4: एक एक्सआईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
7: लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं।
8: श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा स्पीच वॉज अ टॉक्सिक पंजेंट डायरेक्शनलेस रैंट डिवॉर्ड ऑफ एनी कंस्ट्रक्टिव कंटेंट। मोस्ट कंडमनेबल वॉज द वे इन विच प्रियंका गांधी वाड्रा, हु इज अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ अनडिजर्व्ड एंटाइटलमेंट, हैविंग द टेबरिटी टू मॉक एंड मेलाइन अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक। The current IIT director, unlike Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi, by his sincerity and dint of his hard work, has distinguished himself.
9: तरीके से कल डिबेट पूरे पेपर लीक मामले में चला, उसमें उसके बाद बीजेपी के तमाम जो एमपीस थे उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी बिल के बारे में तो बात की ही नहीं, वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
10: देखिए, हम वो बात करते हैं जो लोगों के मुद्दे होते हैं। अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनका क्या बयान था? सम्मानित नहीं किया उन्होंने बिल्कुल बानों के रेपिस्ट को। इसमें झूठ क्या है? क्या पूरे देश को शिक्षा मंत्री ऐसा दोगे? पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, आपकी नीति क्या है और नियत क्या है, आपके दोनों में फर्क है। तो पक्ष का काम है मुद्दे उठाना, तो पक्ष मुद्दे उठाएगा। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बोला है, कोई ऐसी बात नहीं बोला जो किसी को पता ना हो, पूरी पब्लिक डोमेन में है वो बात। तो बात तो किस बात से है, उसका जवाब दें।
11: कमेंट्स मेड ऑन आईआईटी डायरेक्टर कामकोटी, it's very uncalled for. You should look at his track record. He has done something path breaking in IIT Madras, not just in the artificial intelligence or new age technologies, but for the last 5 to 10 years IIT Madras has turned his vision in such a way that

0: they started investing in a lot of startups. And they all became very, very good valued companies.
1: So it's been Priyanka Gandhi versus Anurag Thakur when it comes to the Lok Sabha and inside Parliament, a comment that was made by her, not directly taking names of the professor, but of course an indirect jibe there. You have BJP MPs who have expressed strong objection to what Priyanka Gandhi has said, including Anurag Thakur. The controversy unfolded during the debate on the anti-leak paper bill that was tabled in Parliament. This is the Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. And Priyanka Gandhi questioned the government's approach to overhauling India's examination system following the NTA crisis. You have BJP MPs completely incensed at the moment. They also, some of them, demanding action against Priyanka Gandhi. But that's the latest we have for you in terms of the reactions that have been coming in. That's not the only controversy that has emerged from inside Parliament. Kangana Ranaut has sparked fresh controversy after calling Gen Z generation gutter in a series of remarks targeting the student-led protests. She questioned the upbringing of the protesters, saying she had never seen so much ugliness in one place, and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging they were ugly and corrupt and can't be homemakers either. The Cockroach Janata Party, the CJP, has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangana Ranaut's remarks, saying the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangana Ranaut seriously. Meanwhile, BJP MP Dharmashila Gupta has backed Kangana Ranaut, saying she is absolutely right.
2: कंगना रनौत ने भी जेंजीज को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है
2: जी बताइए ये बताइए कंगना रनौत ने भी जेंजीज को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है
2: जी बताइए
4: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है वो पॉलिटिशियन है नेता बन गई है उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था
5: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है गुंडों की पार्टी मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया दीपके पर इंक किसने फेंकी सारे लोग एक ही पार्टी के हैं तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया
6: माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो अभद्र गालियां जिन छात्रों ने दिया मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ वो छात्र छात्राएं ने अपनी माँ के कोक को शर्मसार किया जिस कोक से वो उन्हें जन्म लिया हर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कारी और एक मर्यादित इंसान के रूप में इस धरती पे देखना चाहती है
7: अब जिनके विचार ही गटर जैसे हैं जिनके विचारों से गटर जैसी दुर्गंधी आती है उस बारे में हम क्या बात करें जिनके विचार जब मुंह से निकलते हैं तो गटर जैसी बात आती है तो दूसरों को गटर कहने के लिए उनको कोई ज्यादा मुआवजा देने की जरूरत नहीं तजों को देने की जरूरत नहीं है वो उनका पूरा इतिहास महिला है करके हम सम्मान करते हैं पर किसी महिला के लिए जो शब्द का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है जो वहां पे जैन जी के बारे में युवा लड़कियों के बारे में जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो दूसरों को लागू नहीं होता वो खुद को लागू होता है
8: wondering this statement of Kangana Ranaut because it's another addition to her stupid foolish statements and Kangana Ranaut I don't know in which world she lives there was a very huge student protest and all even a major section of BJP leaders understood the mode of situation, mode of the nation. Then these politically migrated people without any substance, you know, जो जस्ट जस्ट हम लोग अब क्या प्रधानमंत्री को जय जय बोलने के जो पॉलिटिशियन आया.
9: कंगना रनौत ने जिस तरीके की स्टोरी डाली, गटर लाइक स्टूडेंट्स, गटर लाइक अप्रोच कहा गया,
10: ये उसकी मानसिकता दर्शाता है. उनकी जैसी मानसिकता है वैसे उनके मन से बात बाहर आता है.
1: एंड हियर इज अ कंट्रोवर्शियल रिमार्क दैट स्टार्टेड इट ऑल.
11: आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे रहे. हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है. आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने. ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं. आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की. और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे. और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है. उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस.
1: In news just coming in, the CJP founder Abhijit Dibke has spoken out on whether they will start a fresh agitation. He has said, and I'm quoting him here, "We will do it very soon. If the government does not agree, does not mend ways, we will have to do it." Remember, the CJP has warned of another protest over what it calls a breach of agreement regarding no police action against protesters detained in weeks of rallies nationwide.
12: वेरी सुन, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधारती है तो करना पड़ेगा. वेरी सुन, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधारती है तो करना पड़ेगा.
1: Tejshree joins me live. Tejshree, we've seen a lot of states withdrawing cases against protesters who are part of the CJP movement. What are the demands that Dibke is talking about here? Because he does warn that they might start another agitation if it comes to it.
13: Well, absolutely. What they want, Vedika, is that the cases should be dropped, or the FIRs actually that have been filed against all these students, or for that matter, the protesters, that all should be withdrawn with immediate effect, and a written assurance should be given from the side of government that no action will be taken in future as well against any one of them. Remember that already the cases that were filed in Maharashtra, in the state of Bihar and in the state of Assam, from all these states, the cases, the FIRs have been already withdrawn from the side of administration. But as far as the national capital is concerned, the cases still remains to be as it is. However, the Delhi police has also stated that they have not got a clearance from the side of top authorities, from the side of government as well, so as to withdraw the FIRs, or for that matter the complaints that have been registered so far, or the action that they have to take. So as of now, it remains to be seen that what happens next, keeping in mind that the CJP has already stated that if our demands are not fulfilled, we will be again continuing with our agitation. We will be sitting on a protest another time, for the second time as well. We have seen that what have happened on the streets of the national capital. So remains to be seen that what actually happens as far as the cases that have been filed in the national capital are concerned. Will the Delhi police be withdrawing all the cases? Because you see, Delhi police have also identified many individuals as well who were involved in violence as well, that where we saw on the streets of national capital on 20th of July, that how there was, yes, there was violence, and Delhi police have identified some of them, so as to who created this ruckus. But now needs to be seen that how they will be differentiating between the students, the protesters, and of course those who also, you know, incited violence amidst this entire protest was underway. Number one. Number two, needs to be seen that how the CJP actually takes this issue forward, keeping in mind that they have multiple times stated that they will be again holding a protest if demands are not fulfilled. Back to you.
1: Tejshree, thanks for joining me live there. The CJP has warned, like Tejshree just pointed out, a fresh round of protests if the government fails to withdraw FIRs against protesters. The CJP further said that Supreme Court's interim order allowing existing investigations to continue cannot be used as a reason to deny the commitment made to the students by the government. Meanwhile, several NDA ruled states have begun steps to withdraw cases linked to the protests, with Bengal now joining Bihar, Assam and Maharashtra. The Bengal government announced that no coercive action will be taken against students who participated in the NEET protests, clarifying that the protection will not apply to persons with criminal antecedents.
4: जैसे आपको पता है, सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ. सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट के स्टेट्स है, वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने. आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में, अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए. अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे. दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे.
14: एकदम ठीक बोला गया सीजेपी जो बोला दिल्ली से, जो लोग, जो स्टूडेंट आंदोलन किया वो आंदोलन के खिलाफ, उनका खिलाफ जो जो कार्रवाई डिफरेंट गवर्नमेंट शुरू किया वो बंद होना चाहिए. ये वो सीजेपी का एकदम ठीक स्टैंड है.
1: Well, the BJP is attempting to reach out to Gen Z, and this is through a fresh social media campaign aimed at connecting with Gen Z through a new promotional video. The latest addition to the campaign came from BJP's Haryana unit, which released a reel featuring a conversation between a group of youngsters in a gym about the student protests at Delhi's Jantar Mantar. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Narendra Modi's leadership. In an apparent reference to the recent resignation of the education minister, the video says that someone's resignation is not a personal victory for any individual, but a symbol of strength of democracy. All eyes will be on how this video is perceived by Gen Z.
15: देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में.
16: क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
15: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है. सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको.
1: Here's a look at how leaders are reacting, or the other party leaders are reacting to this attempt to woo Gen Z.
17: देखिए, मैं ये कहूँगा जैन जी जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो इस टाइम पूरा देश जान गया है जैन जी को, उनकी जनरेशन को, किस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली उनकी जो रही है और उनके काम के सिलसिले में. लेकिन उनकी जैन जी की ताकत इसलिए देखने को मिली कि जिसको बड़ी बड़ी जनता बड़े नहीं झुका पाए सरकार को, लेकिन जैन जी के आगे सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और उनकी एकता, उनका इत्तेहाद, उनकी नॉलेज और देश के लिए समर्पित होना, ये उनकी बड़ी ताकत.
18: देखो, देश के बच्चों ने ये तो बता दिया कि हम इस देश में हैं और इस देश में बड़ी संख्या में हैं और हमारे खिलाफ जब निर्णय होंगे तो इसी तरीके का आपको विरोध सहना पड़ेगा. इसलिए आज उनकी चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है उनके बारे में. उन्होंने आगे भी उन्होंने इस सरकार को ये बताया है कि जो आप करोगे हम उन चीजों का विरोध करेंगे जो देश के हित में नहीं.
1: Chennai police have arrested Aragiri's granddaughter of former Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi in connection with the alleged assault case involving a senior SBI official. Police said she appeared before the investigating officer, was questioned and subsequently arrested before being released on station bail. The police have said further investigation is underway and steps are being taken to ensure appropriate action through court. A political face-off has erupted between Congress and the RSS after Karnataka Minister Priyank Kharge questioned RSS's registration funding and accountability. Karnataka Minister alleged that an organization with such a large public presence should disclose its identity as well as its financial sources. He also questioned the need for security cover without registration. The remarks triggered a strong response from VHP spokesperson Vinod Bansal, who accused the Congress of distorting facts for political gains and called for the Congress to self-reflect. This has become a huge standoff between the two parties.
19: SP Mukherjee, unhone khat likha Sir John Herbert, who was then the governor of Bengal.

0: उनको लिखा है, डिटेल्ड लिखा है लेटर कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे तबाह किया जा सकता है। जब 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में पूरी दुनिया, पूरी हिंदू, पूरा हिंदुस्तान ने एक आवाज में बोला कि हम तिरंगा 26 जनवरी 1930 को हम अनफोल्ड करेंगे, हम लहराएंगे, तो सब लोग मान गए थे सिवाय एक ही संगठन, कौन सा संगठन? आरएसएस।
1: इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ओछे राजनीतिक दुष्प्रचार करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कैसी विडंबना है कि जिन लोगों ने दशकों तक राष्ट्र से ऊपर अपना वोट बैंक रखा, वे आज राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अरे प्रियंक जी, किसी पर झूठे आरोप लगाने से कभी इतिहास नहीं बदलता। आपका बयान तथ्यों से परे और राजनीतिक पूर्वाग्रह का एक दस्तावेज है। इतिहास को विकृत करने या असत्य को 100 बार दोहराने से वो सत्य नहीं बन जाता।
2: Assam continues to battle a devastating flood crisis with the death toll now climbing to 75. More than 3.3 lakh people remain affected across 7 districts even as flood waters recede in some areas. Thousands have been displaced, homes and roads remain submerged and rescue and relief operations are continuing. Authorities are on high alert as rivers continue to pose a threat with the state grappling with the aftermath of relentless monsoon rains. Meanwhile, a viral video of a man risking his life in Sivasagar district to save his cattle has become the defining image of the flood horror in the state of Assam. Slipping to a short break, we're expecting Rahul Gandhi to speak in the Lok Sabha shortly. We'll of course cut live to that. We'll be back with more in moments from now. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
11: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
10: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
12: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind me.
17: And we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
12: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
20: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
21: Ye yug tumhara, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
22: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
8: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
7: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर।
9: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
10: This location from Tel Aviv
9: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
11: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
12: The Ayatollah Khamenei is gone.
13: There has been a missile attack right behind you.
14: And we need to rush into a shelter.
15: Heading there.
16: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
9: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
17: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
18: A yug tumara. ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
19: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: idiots. They don't listen to anything anyone says.
1: माने सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक मिनट माने सदस्य प्लीज एक मिनट माने सदस्य
0: मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ,
1: प्रतिपक्ष के नेता हैं,
0: आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू।
1: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूँ,
0: नाम ही नहीं लिया था।
1: आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।
0: मैं कर रहा हूं सर,
1: अब
0: मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर,
1: ठीक रहेगा
0: सर। आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर, आई विल लेट मी कैरी ऑन सर। सो आई सेड सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he is God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि ये student है, और फिर ये idiot भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन हु इज एब्सोल्यूटली कन्विंस्ड दैट अनदर इडियट इज गॉड। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज, स्टूडेंट, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so speaker sir,
1: माननीय माननीय विपक्ष के नेता है आप,
0: नाउ
1: सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें
0: okay, उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सो स्पीकर सर, आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क एंड दिस फ्रेमवर्क केम टू मी फ्रॉम अ 18 ईयर ओल्ड गर्ल, लवली स्टूडेंट, प्रोबेबली वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इन द छात्रों की गूंज प्रोग्राम्स। सर सुपरफिशियली, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर मनी इज स्पेंट ऑन वन एग्जाम, ऑन वन एग्जाम देन इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन आर एजुकेशन बजट। सर 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। सर प्लीज
2: सर विल नॉट अलाउ एनीबडी टू गो, इज दिस द पॉइंट किरण रिजिजू जी, सर विल नॉट अलाउ, व्हाट इज दिस
3: ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं
0: सर,
3: वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया,
0: आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। आई डिड यूज इट फॉर यू,
3: शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में आन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब
1: है,
3: और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो आन पार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं रूल एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है।
1: माननीय सदस्य
0: स्पीकर सर,
1: आप संसद,
0: सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट,
1: आप कोई ऐसा शब्द बोलो,
0: आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर, इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर।
1: वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसद है उसको निकाल देंगे,
0: स्टूडेंट को हम
1: आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है
0: सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज ना, लेट मी सर बोलने तो दीजिए सर, अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द उसका प्रॉक्सी शब्द,
1: नो आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले
0: सर,
1: आपसे ये मेरी अपेक्षा
0: सर, बट आप सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
1: आप विधेयक पर बोले मैं हाउस को ऑर्डर पर रखूंगा क्या।

0: defined this young lady, gave me a beautiful framework. Three categories of people. I found this to be, because order lai sir.
1: You are not allowing that.
2: सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया, हम आपके आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है, हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है।
3: नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं।
4: आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है, आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है।
0: देखिए सर, सर, सर, हाउस, सर, टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, the entire opposition starts to shout.
2: कहता हूं राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहां तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया, ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
0: सर, इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट अस जस्ट बी प्रिसाइज, इट इज अनपार्लियामेंट्री फॉर मी टू यूज दैट वर्ड अगेंस्ट अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई हैव नॉट यूज दैट वर्ड अगेंस्ट एनीबॉडी, आई हैव जस्ट स्टेटेड दैट दिस कैटेगरी एग्जिस्ट। Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
3: मुझे टाइम बता दो कितना ले लिया।
4: एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर
0: मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं।
4: नो, संसदीय कार्य मंत्री आप उन...
0: ये फिर से आ गए।
4: रक्षा मंत्री जी बोलना क्या, एक मिनट। देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो
0: सर मैंने हील नहीं किया,
4: हील नहीं किसी हील नहीं किया, अगर कुछ बोला
0: नहीं, मैंने हील नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने हील नहीं किया है।
4: बोलिया नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं, मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं, पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, बोले हैं सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए।
4: अपना व्यवस्था से निकल जाता है।
5: ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।
0: सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, there is one category of people called student vidyarthi jo vidya ka arth dhoondta hai, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures, so the student is never scared of the truth, he loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else. Because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, imandar hai, wo bypass ho jata hai. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry.
6: Yes.
0: Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them, every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir.
4: देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही, आज जिस विधेयक पर चर्चा
0: बैठे हैं द होम मिनिस्टर सर, द होम मिनिस्टर
4: नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, ये व्यवस्था रहती है सदन के अंदर।
0: सर द होम मिनिस्टर सर द होम मिनिस्टर ऑथराइज shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
4: Sir,
6: आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं।
0: What?
6: आप कल्पना कर सकते हैं? आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग को ऑर्डर दिया?
0: What is going on?
6: कैसे बोल सकते हैं? आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकलना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांग लिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। ऐसा तो नहीं बोल सकता। statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं?

0: Scusalo.
1: A dashboard. Nini, a dashboard. Nini, a dashboard hai agar. Nini, a dashboard hai. अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
2: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही ने ये गलत बात। आपको राहुल जी, आप देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है।
3: देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आप

0: आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो है, और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें ये उचित नहीं है,
1: सर
0: उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
1: सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहां शांति सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम लेकर के ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस में बोल रहे हैं, आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया है, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर, यहां जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोले, कैसे बोला है, आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगिए? ऐसा नहीं चल सकता है अध्यक्ष, चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं, नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस में बोला है, ऐसा नहीं होगा। बोलो सर।
0: नहीं बोलिए आप, लेकिन
1: सर द यूज मैं बोल सकता हूं सर, प्लीज।
0: मेरा मानना यह है कि आपने जो तथ्य किए है, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए।
1: बोलने तो दीजिए सर,
0: आप बोलिए ना,
1: बोलने दीजिए सर,
0: कौन मना कौन कर रहा बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर
1: मैं बोल सकता हूं सर।
0: हाँ बोल सकते हैं आप,
1: सदन तो कटाइए सर इनको, बोल सकते हैं स्पीकर सर। स्पीकर सर, द यूज ऑफ फोर्स, द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द होम मिनिस्टर, इट कैन नॉट बी ऑथराइज्ड आइदर बाय द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर।
0: ऐसे नहीं चल सकता सर, आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो no.

होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए।

0: माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रियाएं होती है। ये मेरे आपसे आओ नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाएं तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते। मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं,
1: माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए,
0: माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप।
2: माइक नहीं है,
1: माइक नहीं है सर,
0: माइक तो चालू है। आप बोलो सर, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप।
1: मैं बोल सकता हूँ सर?
0: आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं।
1: उनको आप बैठाइए सर।
0: नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, सदन के, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे। और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पर बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पर बोलना नहीं चाहते। आप सदन, नो,

0: after the comments made by the leader of opposition Lok Sabha Rahul Gandhi, where he targeted Amit Shah in Parliament. The centre has demanded.
1: ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे।

0: having a voting in this session.
1: Right, of course, you know, while questioning the allegations that are being made by the leader of opposition was Kiran Rijiju, saying that who has told you that it was Amit Shah who ordered the attacks on the student protesters. And of course, you know, it is Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav also, we just heard, say that if that's not the case, then you need to come out and say who really ordered this in the first place. Why are those, you know, answers not being provided to the opposition, you know, Aishwarya?
0: Well, Divya, there are certain rules, conventions of the parliament, and without submitting a notice, you can't just ask any you can't level any allegation or charges against any member in the house. It is certainly the leader of the opposition who leveled charges on Mr. Amit Shah, stating that it is on.
1: Right, Aishwarya, hold on to that thought. First, let's just listen in to how people are reacting to what has been said in the parliament today. Listen in.
2: कड़े हुए भाई सब लोग.
3: राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अमित शाह को के बारे में बोला और साथ ही जिन शब्दों का प्रयोग किया सदन के क्या कहेंगे?
4: देखिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक है जो देश के सबसे बड़ा पंचायत के जो अपोजिशन का लीडर है वो राहुल गांधी है. हर बार उनको रिप्लाई के समय ना उनको बिल का नाम लेगा, आपने देखी वीडियो में, ना बिल का उनको पता है कहाँ बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है. भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, परंपरा में विश्वास नहीं, स्पीकर के डायरेक्शन में विश्वास नहीं है. इनके मन में जो आए बोले. अरे मिनिस्टर तो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज होता है, कोई एमपी के बारे में आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ना हो. ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो ऑथेंटिक है. ये हमको गूगल में मिल गया इससे नहीं हो सकता है. तो इसलिए आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बोलना पड़ेगा. तो आप जो मन में वो बोलेंगे. तो इसलिए संसदीय कार्य मंत्री हमारे किरण रिजिजू ने उठ के खड़ा होकर बोला है जब तक वो माफी ना मांगे तब तक नहीं चलने दिया जा सकता है. क्योंकि उनको हर बार हम छोड़ देंगे यार, वो कुछ भी बोलेगा, ये तो परंपरा का विपरीत चला जाएगा. हमारे न्यू जनरेशन क्या सीख.
1: Right, that is BJP, of course, hitting out at Rahul Gandhi. In fact, Rahul Gandhi is a serial offender. That is what Shehzad Poonawalla of the BJP has to say. Today, he has crossed all lines of decency, decorum and parliamentary behaviour. His language and allegations only reflect his culture, upbringing and frustration. That is what the BJP had to say after Rahul Gandhi there, saying that this really shows the aspirations of the youth. After saying that, you know, it's the Home Ministry that's ordered it. Therefore, it's the Home Minister who ordered that attack that took place on the student protesters. Listen in to the BJP.
5: केवल अपने आप के लिए क्रेडिट जुटाना है और किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित को पाना है, ये राहुल गांधी का लक्ष्य है. ये पार्लियामेंट में साबित हो गया. देश की सरकार ने अनेकों कदम उठाए स्टूडेंट्स के लिए. एक स्ट्रॉन्ग बिल लाया, उस पर चर्चा थी. चर्चा बिल पर करने के बदले कि कैसे ये कानून और व्यवस्था मजबूत हो, जिससे कि पेपर लीक तमे और कांग्रेस के भी कई राज्यों में हुई है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी तो उन्होंने ली नहीं. ये राहुल गांधी शुरू हो गए फिर से अपशब्द बोलना पार्लियामेंट में, गाली गलौज करना, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाना. और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने दिखाया, दिखाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक मंशा और हित के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे. इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो गया. अपने कर्नाटका के, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कोई बात नहीं. प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट संवाद करके स्टूडेंट्स के लिए कई कदम उठाए, यहां पर एक सुझाव नहीं दे पाए. केवल और केवल यहां पर भड़काऊ भाषण, अनसब्सटेंटिएटेड एलिगेशंस और झूठ. और खुद का क्या कृत्य है? केरलम में जहां पे इनकी सरकार है, कर्नाटका में जहां पे इनकी सरकार है, प्रोटेस्टर्स, जेन्युइन प्रोटेस्टर्स पे केस थोप रही है, हजारों लोगों पे. वहां पर कुछ और करेंगे, दिल्ली में आकर कुछ और बोलेंगे और पार्लियामेंट जैसे पवित्र फोरम को भी धूमिल करने का काम करेंगे. और पहली बार नहीं, कभी आंख मारना, कभी हक करना, कभी पार्लियामेंट में नरवणे जी की बातों को ट्विस्ट करके उनके झूठे किताब का एक हवाला देना, पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाना अपनी राजनीति के लिए, पार्लियामेंट में डिसरप्शन करना, ना कि डिस्कशन, कॉन्फ्रंटेशन करना, ना कि कॉन्सेंसस बनाना. और जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक अनसब्सटेंशिएटेड बयान दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है उनके रफाल वाले झूठ पर कि चौकीदार चोर है. उन्होंने बोला सेना की पिटाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता. राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर है, वो स्टूडेंट्स का हित नहीं, केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं.
1: Shehzad Poonawalla there calling Rahul Gandhi a frustrated loser at that. Aishwarya, my colleague, back with us. Aishwarya, of course, you know, raising objections to what has been said by Rahul Gandhi, because the claim that's been made here by Shehzad Poonawalla is that the same rules don't apply when it comes to Congress-ruled states.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्गन मसाला।
11: The news, Ayush. Since when do we do scripts?

0: The Home Minister and the Prime Minister who are missing from the Parliament. So is Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju objecting to the remarks and calling for expulsion of the remarks of the Leader of Opposition. He also added that Rahul must apologise for his baseless remarks, and that is what is now being asked of Rahul Gandhi.
1: Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
2: Sir, Home Minister का कौन सा order है? वो order का copy आप निकाल के बताइए. आपने कहा Home Minister ने order दिया है firing के लिए. आप वो order का copy निकालिए. आप बताइए किसने आपको बताया? कौन सा order number? ऐसे नहीं हो सकता है. कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे. Headline बतौरने के लिए ऐसा नहीं हो सकता. ये भारत का संसद है. यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए. ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं. आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते.
3: लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया. तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है. तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पर?
1: Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir.
2: Rahul ji ne ye nahi kaha, unhone seedha naam leke kaha. Inquiry ka baat nahi manga. Rahul Gandhi ji ne inquiry ka baat nahi kiya. उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया. कैसे बात कर सकते हैं आप? ये बहुत सीरियस है. आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए. आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है. ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए.
4: बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए.
5: अपना व्यवस्था से निकल जाता है.
4: ओके ओके, वो निकाल दिया जाए. और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए. आप बोलिए.
6: इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है. हमने देखा एक घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले.
7: यू सी व्हाट राहुल गांधी इज टोल्ड, इज वेरी क्लियर. दिल्ली पुलिस टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इजंट इट? दिल्ली पुलिस कमिश्नर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम होम? Delhi Police Commissioner, the straight question. Delhi Police Commissioner taking order from whom? Delhi Police Commissioner taking order from Home Ministry only. The Home Minister himself is responsible. That is why he is not coming to the house at all.
8: Students एक बहाना है केवल अपने आप के लिए credit जुटाना है, और किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित को पाना है, ये राहुल गांधी का लक्ष्य है. ये पार्लियामेंट में साबित हो गया. देश की सरकार ने अनेकों कदम उठाए स्टूडेंट्स के लिए. एक स्ट्रांग बिल लाया, उस पर चर्चा थी. चर्चा बिल पर करने के बदले कि कैसे ये कानून और व्यवस्था मजबूत हो, जिससे कि पेपर लीक तमे और कांग्रेस के भी कई राज्यों में हुई है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी तो उन्होंने ली नहीं. ये राहुल गांधी शुरू हो गए फिर से अपशब्द बोलना पार्लियामेंट में, गाली गलौज करना, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन लगाना, और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने दिखाया है, दिखाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक मंशा और हित के लिए

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barson se sarson.
6: Kuch toh baat hai is dil mein.
7: Thode mein zyada swaad, yehi toh hai iski khas baat.
8: Wow, mama, kya swaad hai?
9: Arey, meri raja.
10: Sabka raja, aadke aur masala.
11: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
12: This location from Tel Aviv
11: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
13: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
14: The Ayatollah Khamenei is gone.
15: There has been a missile attack right behind me.
16: And we need to rush into a shelter.
17: Heading there.
18: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
19: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
20: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
21: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
22: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
23: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
24: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
25: POK ke firing range mein khade hain.
26: Just few inches away. Is POK.
25: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े। Is it fire?

0: All right, let's go back to the Lok Sabha. Jitendra Singh is addressing the house. Let's listen in.
1: उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता है, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का की जानकारी नहीं, और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं, और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्ज्वल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।

कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे, हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं, गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना, गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब यह भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और यह कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में, अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है, जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7LKM के दरवाजे पर जा बैठे, और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले, और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में कुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पर दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बेआबरू, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना जानूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना, उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि अटमोस्ट रिस्ट्रेंट वॉज एक्सरसाइज्ड एंड इट वॉज मेड श्योर दैट कैजुअलिटीज डोंट हैपन। लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा, जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969
1974 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती है कि 150 टाइम्स पेपर लीक हैपन्ड विच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। आई हैव वेरीफाइड दिस फ्रॉम द रिटन स्क्रिप्ट विच वॉज देयर इन द पार्लियामेंट लास्ट नाइट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्चुअली चेक ऑन माई सेल्फ। 150 पेपर लीक्स अफेक्टिंग 750 करोड़ चिल्ड्रन, विच मीन्स 7.5 बिलियन। द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट अबाउट 8 बिलियन एंड यू हैव 7.5 बिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया। ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए, शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 760 टू 1293। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विदाउट एविडेंस। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 51,534 टू 64,896। इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच इज अ गेम चेंजर एंड विच शुड हैव हैपेंड एक्चुअली। वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था, उसका नॉर्मन क्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉर्मन क्लेचर यूज इन द कॉरपोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेज टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड यंग चिल्ड्रन प्रिजनर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स चोजन फॉर देम इन क्लास 12 बाई देयर पेरेंट्स बाई देयर गार्डियंस बाई देयर एल्डर्स। NEP 2020 हैज लिबरेटेड आर एडोलेसेंट चिल्ड्रन फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स दैट दे टुक अप फॉर क्लास 12 एंड गिवन देम एन एप्टीट्यूडनल फ्रीडम। अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं सब्जेक्ट में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। देयर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844,
एमबीबीएस सीट

51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया, और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया, और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन और अगले 3 महीने में। एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई, हम तीसरे दर्जे पर आज खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि रिपब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी, कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज इनएक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ाकर के 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ाकर के 5 साल से 10 साल तक कर दी गई, फाइन 1 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इंप्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ाकर के 7 से 10 साल कर दी गई, फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहां बातें की गई, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: and we need to rush into a shelter.
1: Heading there.
2: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Rajkol, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
4: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
8: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
9: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
10: कुछ तो बात है इस तेल में।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: POK ke firing range mein khade hain.
13: Just few inches away. Is POK.
12: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Kangana Ranaut's remarks, saying the party does not take her seriously and claiming that even the BJP leaders don't take Kangana seriously.
1: कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बुजुर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे. हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे. डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है. भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं. तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं. बाहर आकर आप मेरे आराध्य चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आप भाव ना हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आध्या मेरे भगवान हो चाहे मेरे नेता हो प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं कोई उनको लीडर मानता है कोई उनको दोस्त मानता है कोई उनको परिवारजन मानता है कोई उनको भगवान मानता है. उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं. ये कोई कूल बनना नहीं है ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा. आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए. इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं. बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे. आप कभी भी कोई संबंध परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी. वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए. लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए. आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए भौंडे हो जाए ताकि आप जेल में पहुंचे. आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है. मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में. सो आप प्लीज इवॉल्व होइए.
2: बताइए कंगना रनौत ने भी जेंजिस को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है.
2: जी बताइए. ये बताइए कंगना रनौत ने भी जेंजिस को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है.
2: जी बताइए.
4: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था.
5: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है. गुंडों की पार्टी मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है. दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया दीपके पर इंक किसने फेंकी सारे लोग एक ही पार्टी के हैं. तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है. और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है. लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया.
6: माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो अभद्र गालियां जिन छात्रों ने दिया मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ. वो छात्र छात्राएं ने अपनी माँ के कोख को शर्मसार किया जिस कोख से वो उन्हें जन्म लिया. हर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कारी और एक मर्यादित इंसान के रूप में इस धरती पे देखना चाहती है.

0: प्रयोग किया है, जो वहां पे जैन जी के बारे में, युवा लड़कियों के बारे में जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो दूसरों को लागू नहीं होता, वो खुद को लागू होता है।
1: Wondering this statement of Kangana Rawat, because it's another addition to her stupid, foolish statements. And Kangana Rawat, I don't know in which world she lives. There was a very huge student protest, and all, even a major section of BJP leaders understood the mood of the situation, mood of the nation. Then this politically migrated people without any substance, you know, जो just मतलब क्या प्रधानमंत्री को जय जय बोलने के जो पॉलिटिक्स में आया।
2: कंगना रनौत ने जिस तरीके की स्टोरी डाली, गटर लाइक स्टूडेंट्स, गटर लाइक अप्रोच कहा गया,
3: ये उसकी मानसिकता दर्शाता है। उनकी जैसी मानसिकता है वैसे उनके मन से बात बाहर आता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barson se sarson.
5: Kuch toh baat hai is dil mein.
6: Thode mein zyada swaad, ye hit toh hai iski khas baat.
7: Wow, mama, kya swaad hai?
2: Arre, meri raja.
8: Sabka raja, aur masala.
9: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: All right, let's move on to some other news and the fallout of the protests and all those videos and comments that we saw being made during the protests by students. Now, BJP MP Kangana Ranaut has remained in controversy in the news over the remarks that she made against the Gen Z protesters, specifically her attack against young women protesters. There's been a huge backlash, and then she's responded, and there have been counter responses, and then her response again. Now, she called out the protesters using abusive language and said, "We had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation?" This comes after she had questioned the upbringing of the protesters, saying she had never seen so much ugliness in one place. And she made the controversial comment specifically about young Hindu women. This is initially, it was a post that she put out on Instagram where she said that young Hindu women protesters who were there, that they were ugly and corrupt. They were actually like cockroaches. And she said that they can't be homemakers either. And she claimed they were involved in drugs and body counts. So very personal remarks and very generalized attack against the Gen Z protesters. So already the opposition parties have taken this up. They've questioned her statements. They've criticized her for making these remarks and asked the government to answer. But now the Cockroach Janata Party has also hit back at Kangana Ranaut. Earlier, a CJP spokesperson, Saurav Das, dismissed her remarks, saying the party doesn't take her seriously. Even BJP leaders don't take Kangana seriously. And now Abhijit Dibke has also responded to her attack. Listen in.
1: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बुजुर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियाँ देंगे, उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है, लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं.
2: बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है?
2: जी, बताइए. ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
3: उनको कौन सीरियसली लेता है?
2: जी, बताइए.
4: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था.
5: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है. गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में, सबको पता है. दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं. तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है. और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है. लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया.
0: All right, so on one hand, you have this controversy involving a BJP Member of Parliament Kangana Ranaut and her attack against the Gen Z and the women protesters. But on the other hand, the BJP making a very serious effort to reach out to the Gen Z. If you had the parliamentarians using, you know, Gen Z lingo in Parliament. Well, there's also been a new social media campaign which is aimed at connecting with this young generation through a promotional video. So this latest addition to the campaign came from the BJP's Haryana unit. Which released this video that you can see on your screens, featuring a conversation between a group of youngsters in a gym, women and young men, and about they're discussing the student protest at Delhi's Jantar Mantar and the paper leak issue and the NEET exam. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Modi's leadership. You have, a gym, their instructor coming and then talking to them about this and talking about all the changes that have taken place, and an apparent reference to the recent resignation of the education minister. The same person in the video says that someone's resignation is not a personal victory for an individual, any individual, but a symbol of strength of democracy. So that is the video. Of course, the responses to it have been mixed, and of course, we'll have to wait and see how the Gen Z really responds to this video.
6: Dude, कुछ भी हो हमें रुककर पास से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. You haven't even clocked, but India was like when you were 10.
7: सर, आप तो बिल्कुल मेरे डैड की टोन में बोल रहे हो. तुम लोगों ने ओल्ड इंडिया देखा है?
8: बम धमाके, आतंकी हमले, करप्शन की हेडलाइंस, ये वो.
6: अरे गलत भी तो नहीं कहते तुम्हारे पेरेंट्स. आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फोन है, घर से निकलते ही सामने मेट्रो है, वेकेशन पे जाना हो तो देहरादून एक्सप्रेसवे है, हाई स्पीड ट्रेन्स, हर छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स, पढ़ने के लिए इतने सारे IIT, IIM, AIIMS, इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ मेडिकल सीट्स. इतना बिल्ड करने में पहले देश को 50-50 साल लग जाते थे, दो दो जनरेशन निकल जाते. देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में.
9: क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
6: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है. सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको.
0: All right, so that was the video released by the BJP, an attempt to reach out to Gen Z and also put their point of view across about the development the country has seen under Prime Minister Modi. But let's talk now about the controversy that is continuing over the police action, the violence against the student protesters, and that is really intensifying. Now, the Cockroach Janata Party has warned of a fresh round of protests if the government fails to withdraw its FIRs against protesters. Because remember, that was one of the conditions for calling off the protest at Jantar Mantar. The CJP further said that the Supreme Court's interim order allowing existing investigations to continue cannot be used as a reason to deny the commitment made to the students. Meanwhile, several NDA-ruled states have begun steps to withdraw cases linked to the protests, with Bengal now joining Bihar, Assam and Maharashtra. The Bengal government announced that no coercive action will be taken against the students who participated in the NEET protest, clarifying that the protection will not apply to persons with any criminal antecedents.
10: वेरी सुन, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधारती है तो करना पड़ेगा. वेरी सुन, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधारती है तो करना पड़ेगा.
11: जैसे आपको पता है, सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि FIR सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ. सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट के स्टेट्स है, वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने. आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में, अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए. अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे. दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे.
0: All right, moving on to some health news now. In a campaign, we often talk about hygiene as the first line of defense against disease. But what about the health of people who protect ours? Sanitation workers face daily health risks, yet many remain invisible. In Puducherry, the Harpic World Toilet College is helping change that by training women sanitation workers and improving access to healthcare and social security. Here's how one initiative is making a real difference.
12: Puducherry, a small, quiet coastal town. But inside this little place, a big transformation began. For many years, sanitation workers here were invisible, overworked, underpaid, unheard. Their hands kept the city clean, but their own lives remained uncertain. That's where the Harpic World Toilet College came in. That too, only for women. This wasn't just a training center, it became a place of dignity, learning and second chances. Take Muthu Lakshmi. Once struggling to make ends meet, she lived with constant financial stress, no savings, no security, no safety net. Through the World Toilet College, she received training, steady work and most importantly, respect.
13: என் பேர் முத்துலட்சுமியா. இந்த கழித்தார வேலைக்கு வந்துக்கிறான், குக்கர் பண்ணிடுற வேலை வேலை செய்கிறான். செஞ்சதுக்கு இங்கே வந்து பரிசில் வச்சாங்க எங்களுக்கு. பரிசில் வச்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன உங்களுக்கு என்னமா குறன்னு கேட்டாங்க. கை கிளாஸ் போட சொன்னாங்க போட்டோம், மாசி போட சொன்னாங்க போட்டோம், செருப்பு போட சொன்னாங்க போட்டோம். இந்த வேலைக்கு வந்த பிறகு எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே எந்த நோயும் கிடையாது, என் பசங்களாம் நல்லா இருக்கும். எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை, எனக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக நான் இருக்கிறேன். என்னை வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா குளிச்சுட்டாமல் பசங்களுக்கு தூக்கணுன்னாங்க. அதேமாரி மேடங்க சொன்னாங்க நீ குளிச்சுட்டாமல் பசங்களுக்கு தூக்கணுன்னாங்க. அதேமாதிரி நான் குளிச்சுட்டாமல் போவோம் இல்லை. எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே எந்த நோயும் இல்லை, எல்லோரும் நல்லா சந்தோஷமாக தங்குறாங்க.
14: For many, the World Toilet College became the key to understanding government schemes as well. They learned how to access benefits they were always entitled to but never informed about.
15: அப்போ வந்து கம்மியாக சம்பளம் வாங்கினேன். இப்போ வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு க்ரீன் மாதிரி இந்த வேலையை செஞ்சேன். அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சு.
14: But sanitation work comes with invisible risks. They face higher exposure to infections, respiratory illness, skin diseases, and untreated chronic conditions. That's why health camps here matter.
16: Actually, health camp actually plays a crucial role in early detection of conditions like hypertension, infections, and respiratory issues. These health camps also act as a stepping stone for early intervention of diseases and also contributes to lifetime expectancy improvement and also in preventive care measures.
14: Today these workers carry something powerful, the Suraksha passport. Not just a document but identity, recognition and respect. Proof that their work matters, that they matter. When we invest in the people who keep our cities clean, we don't just improve sanitation, we uplift families, protect health and build futures.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
11: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
12: This location from Tel Aviv
11: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
13: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
14: The Ayatollah Khamenei is gone.
15: There has been a missile attack right behind you.
16: And we need to rush into a shelter.
17: Heading there.
18: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
19: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
20: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
21: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
11: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
22: Now watching NDTV 24/7.
23: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
24: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
23: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
11: When stories have impact,
25: from the Todd Dorsey, managing editor and primetime anchor.
11: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
23: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
26: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
27: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
11: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर,
28: सो मेनी अटैक्स,
11: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज।
28: इट्स इनक्रेडिबल।
11: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
28: Welcome to Left, Right and Center.
11: Hard facts.
28: War struck country.
11: Hard questions.
28: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
28: In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. I am Vikrant. Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV.
29: POK ke firing range mein khade hain.
30: Just few inches away. Is POK.
29: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े। Is it fire?
31: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933. बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
0: conflict has once again triggered a flashpoint between Tamil Nadu and Karnataka. This is over the Kaveri issue that keeps coming up again and again. So Tamil Nadu Chief Minister Vijay has written to the Prime Minister Narendra Modi, objecting to the centre's recent statement in Parliament that Karnataka does not require prior consent from downstream states to build a structure across the Kaveri, calling the reply legally flawed. Vijay has sought its withdrawal and three key assurances from the centre. Meanwhile, Karnataka government has said that it is considering an appeal against the Kaveri Water Regulation Committee's direction to release 3,000 cusecs of water daily to Tamil Nadu.
1: It is wrong. The perception of the centre is wrong, because internationally, the lower riparian states or countries should be consulted before making any change, any construction, additional construction in any river. That is the international law. See, even here we have Indus River passes through Pakistan, but it comes to India. At one point it crosses Pakistan. Pakistan can they build a dam and stop the water? They can't do it. So international law should be applied everywhere. Here, if they want to do any construction in Meghadadu, they should have consulted the Tamil Nadu, Pondicherry and Kerala states.
2: CWMA, a tribunal tirmana mado munchitavagine Congress sarkara yatechvagi igagale neeranna haribiduvanta kelasa igagale madagide. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಅಂದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ
3: ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅವರು 3,500 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ನೀರು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ 4,000 TMC ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
4: ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ?
3: 4 TMC ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ?
4: ಮುಂದಿನ
3: 5 ದಿನ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು CWMAಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ.
7: Now, Kaveri Water Tribunal states that please release 3,500 cusecs of the water to Tamil Nadu. You know that already the amount of water which is already released is more than the whatever Kaveri Tribunal has said for Karnataka to release. Approximately 4.57 liter cusecs of the water should be released, meaning to state that we will not have the water for drinking facilities, even for the farmers of Karnataka will not have the water. What kind of a management is Karnataka Congress government trying to do?
0: Karnataka Minister Priyank Kharge has stoked a fresh controversy after his remarks on the RSS and Savarkar. He first questioned the RSS, both its historical record and legal status, warning that Karnataka could introduce legislation requiring the organization to register under the law. Then Priyank Kharge claimed that Savarkar had encouraged Hindus to join the British and contrasted him with Subhash Chandra Bose, claiming that Bose built the Indian National Army while Savarkar backed the British. The BJP has hit back strongly, accusing the Congress of distorting history. The BJP said it was Jawaharlal Nehru and not Savarkar who divided the nation, and alleged that the Congress leaders have no understanding of Savarkar's legacy. Listen in.
8: जब आजादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी खड़ा कर रहे थे बोस साहब, तो इनके लीडर सावरकर क्या कर रहे थे पता है आपको? पूरा हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना कर रहे थे. वहां सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जवान ढूंढ रहे थे, आर्मी मजबूत करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ. और यहां पे सावरकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन होने के लिए चिट्ठी लिख रहे थे सब हिंदुओं को।
9: मिस्टर प्रियांक खड़गे, हु इज द राहुल गांधी ऑफ कर्नाटका, एंटाइटल्ड डायनेस्ट नेपोकिड ऑफ कर्नाटका, हु हैज नो नॉलेज और आईक्यू ऑफ हिस्ट्री, हैज अब्यूज एंड अक्यूज्ड वीर सावरकर जी विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स। वीर सावरकर जी स्टोर्ड एंड वॉज ऑलवेज फॉर द यूनिटी ऑफ एंटायर भारत। बाय द वे मिस्टर प्रियांक खड़गे, इफ यू डोंट बिलीव दिस, गो एंड रीड इंदिरा गांधीज ट्रिब्यूट लेटर फॉर सावरकर जी। Was she supporting somebody who bifurcated or wanted the bifurcation of the country? Nehru bifurcated the country. Nehru even divided Vande Mataram.
10: इसमें महाराष्ट्र का अपमान कहां से हो गया? सावरकर साहब ने सबसे पहले थ्योरी दी थी कि नहीं दी थी?

0: ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, उनके बयान उठा लीजिए, उनकी किताब उठा लीजिए। सबसे पहले उन्होंने ही दी थी, उन्हीं को बुनियाद बना करके मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग ने उसी बुनियाद के ऊपर अपने अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में सब रखा था। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उनकी सरकारें बनी थी। यह ऐतिहासिक तथ्य से झुटला तो नहीं सकते कि आप मिलकर के सरकारें बना रहे थे। जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के कांग्रेस को ख़त्म करने की साजिशें कर रहे थे। ये सब चीज़ें तो इतिहास में दर्ज हैं।
1: All right, so as Parliament is underway and there was the debate taking place over the anti-paper league bill, a controversy has also erupted over the task force that's been put together to examine the entire process of the papers and, you know, the exam taking. This is Exam Reform Task Force. Now, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra mocked the inclusion of IIT Madras Director Professor V. Kamakoti and questioning the panel's composition. The BJP MP Anurag Thakur, however, condemned and countered her remarks as unacceptable, defending the professor's academic credentials and criticizing Priyanka Gandhi's commentary as misleading. Professor Kamakoti, a distinguished computer science professor, he led the Shakti microprocessor project and has served as the director of IIT Madras since 2022. But listen in to what was said.
2: Is nahi committee mein to ek XIB chief.
3: अरे बात फिर चिल्लाएंगे।
2: एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।

0: मूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं।
1: श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा स्पीच वॉज अ टॉक्सिक पंजेंट डायरेक्शनलेस रैंट डिवर्ड ऑफ एनी कंस्ट्रक्टिव कंटेंट। मोस्ट कंडेमनेबल वॉज द वे इन विच प्रियंका गांधी वाड्रा, हु इज अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ अनडिजर्व्ड एंटाइटलमेंट, हैविंग द टेबिलिटी टू मॉक एंड मेलाइन अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक। The current IIT director, unlike Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi, by his sincerity and dint of his hard work, has distinguished himself.
2: All right, let's go across now to where the BJP is addressing a press conference. Let's listen in.
3: भाग लिया माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततो गत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मैजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तक्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है

कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, यह निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं, यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी, तो बीच बीच में मैं देख रहा था प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृहमंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृहमंत्री हैं, बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृहमंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं, वो जा जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे, वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृहमंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं, ताकि वो जवाब दे सके। केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। तीसरा विषय गंभीर है। इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, मुझसे तो अधिक, बहुत ध्यान से और बिंदुवार तरीके से आपने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, वहां तो दिन भी था, हम कई बार अच्छे से भी नहीं सुन पाते हैं, मगर आप तो बड़े बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? तीन कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि तीन कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में तीन कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में तीन कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स तीन कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता तीन कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग तीन कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझ रहे हो, उनके क्लिप्स निकाल लो, मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के, 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप वार क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की तीन कैटेगरी बताई कि स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का तीन कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट
विद्यार्थी है अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स. नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त. इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है. इस देश का कोई भी स्टूडेंट

0: स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स? और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो, मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनका उनके अपना कोई, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी तीन कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी दो कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई ही नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके तीन तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में, इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर फिर भी राहुल गांधी कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ ऑल्सो एन इडियट विद इन द प्रमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विद इन द हाउस, बिकॉज द हाउस हैज अ डेकोरम। हाउस की मर्यादा होती है, हाउस नियम से चलता है। बार बार किरण रिजिजू जी कॉल एंड शकदर और रूल बुक दिखा रहे हैं कि इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इडियट आप यूज नहीं कर सकते हैं, मगर बार बार वो उसको नकार रहे हैं और इडियट इडियट इडियट कह रहे हैं। पांचवा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृहमंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए, गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी, उन्होंने देखा। जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है, वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा? आपको लग रहा है 5 मिनट नहीं बैठ सकते? राहुल गांधी ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं।
1: All right, so there you have the BJP countering what Rahul Gandhi said in Parliament, hitting out at the claims that he made, saying that a gun was never fired during the student protest, and that has been categorically stated by the minister as well in Parliament on several issues that Rahul Gandhi raised. As we can see, the BJP countering all those claims and arguments that Rahul Gandhi made. We'll continue to track this story very closely for the minute, slipping into a short break.

0: मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में।
1: क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
0: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको।
2: Well, let's in fact listen in to how leaders of other parties are trying to woo the Gen Zs in their vocabulary so far. Whatever the statements, the remarks in the parliament so far. Take a look.
3: देखिए, मैं ये कहूँगा जेन जी जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो इस टाइम पूरा देश जान गया है जेन जी को, उनकी जनरेशन को, किस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली उनकी जो रही है और उनके काम के सिलसिले में। लेकिन उनकी जेन जी की ताकत इसलिए देखने को मिली कि जिसको बड़ी बड़ी जनता बड़े नहीं झुका पाए सरकार को, लेकिन जेन जी के आगे सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और उनकी एकता, उनका इत्तेहाद, उनकी नॉलेज और देश के लिए समर्पित होना, ये उनकी बड़ी ताकत।
4: देखो, देश के बच्चों ने ये तो बता दिया कि हम इस देश में हैं और इस देश में बड़ी संख्या में हैं और हमारे खिलाफ जब निर्णय होंगे तो इसी तरीके का आपको विरोध सहना पड़ेगा। इसलिए आज उनकी चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है उनके बारे में। उन्होंने आगे भी उन्होंने इस सरकार को ये बताया है कि जो आप करोगे हम उन चीज़ों का विरोध करेंगे जो देश के हित में नहीं है।
2: Well, from parliament speeches to Instagram reels, India's political class is speaking a new language, the language of Gen Z. As the anti-paper league bill dominates the monsoon session and a short while ago the bill has been passed by voice vote, MPs are now dropping Gen Z slang. Do you wonder why? Well, because by the next general election, Gen Z will be India's largest adult generation and one of its most powerful voting blocks.
5: अगर मैं जेंजी की भाषा को बरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution.
6: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
7: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है, सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए।
6: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है।
8: इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है चॉइस। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा।
2: Well, you heard all those Gen Z slangs and phrases, but these are not just trending words on social media anymore. They have made it their way into the parliament as well. As the government pushes its anti-paper leak bill, which has now been passed by a voice vote in Lok Sabha, MPs are increasingly using Gen Z phrases in their speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation and will be the biggest lot when India votes in the next general election.
5: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
6: Andolan kyu kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO, fear of missing out.
7: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka, Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
8: Hum jo dilulu ke bare mein bolne na, aap bhi us dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
2: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, MPs are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
5: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडिया इज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
11: This location from Tel Aviv
10: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
12: Prime Minister Narendra Modi

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
10: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
9: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
11: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
12: The Ayatollah Khamenei is gone.
13: There has been a missile attack right behind you.
14: And we need to rush into a shelter.
15: Heading there.
16: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
9: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
17: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
18: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
19: अरे मेरे राजा,
20: सबका राजा आकर मसाला।
21: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
22: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
23: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
24: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
25: 1933। सरसों
9: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
26: so many attacks,
9: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
26: It's incredible.
9: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
26: Welcome to Left, Right and Center.
9: Hard facts.
26: War struck country.
9: Hard questions.
26: In the Ukraine.
9: 30 years of trust.
26: In the Kargil area.
27: North Ukraine.
26: In France. In Italy.
27: At Srinagar.
26: Zionist France.
27: Vishnu Shom for NDTV.
9: Vishnu Shom. Only on NDTV. From the newsroom to the studio to the thick of political action.
28: Watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challenges in the fray, the TMC also has done a bit of DJ.

0: Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind me,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
12: अरे मेरे राजा,
14: सबका राजा आकर मसाला.
15: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
16: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें. वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
17: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
18: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
19: कुछ तो बात है इस दिल में.
20: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
21: 1933.
22: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
23: सो मेनी अटैक्स,
22: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स. And the world's most defining interviews.
23: It's incredible.
22: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
23: Welcome to Left, Right, and Center.
22: Hard facts.
23: War struck country.
22: Hard questions.
23: In the Ukraine.
22: 30 years of trust.
23: In the Kargil area.
24: North Ukraine.
23: In France. In Italy.
24: At Srinagar.
23: Iron is the France.
24: Vishnu Shom for NDTV.
22: Vishnu Shom. Only on NDTV. From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
25: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
26: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
25: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact,

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए

0: हॉलमार्क और
1: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
8: This location from Tel Aviv
7: brought clarity right now, right to complex issues of national security and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you,
12: and we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
7: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
17: अरे मेरे राजा।
18: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
19: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
20: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
6: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
5: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
7: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
8: The Ayatollah Khamenei is gone.
9: There has been a missile attack right behind me.
10: And we need to rush into a shelter.
11: Heading there.
12: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
5: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा,
16: सबका राजा आर्थर मसाला।
17: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
18: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
19: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
1: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has...
7: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's inspections are taking an interesting turn now. This time it was not any hospital ward or a government office. In fact, there was no surprise visit to check on officials as well. The Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay got on a metro train today. He travelled to Nandanam reviewing metro operations along the city, interacting with officials and also with commuters, regular commuters. And there were some heartfelt moments of commuters, women specifically, reaching out to him with a lot of warmth. And this is becoming some sort of a pattern for the new chief minister. He's already made surprise visits to government hospitals, including Egmore, the hospital in which he himself was born. He has checked wards, facilities, patient care, and now he's also checking the commute.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
11: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
10: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
12: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
13: The Ayatollah Khamenei is gone.
14: There has been a missile attack right behind you.
15: And we need to rush into a shelter.
16: Heading there.
17: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
10: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
18: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
19: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
20: अरे मेरे राजा,
21: सबका राजा आकर मसाला।
22: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
23: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
24: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
25: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
26: सो मेनी अटैक्स,
25: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
26: It's incredible.
25: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
26: Welcome to Left, Right and Center.
25: Hard facts.
26: War struck country.
25: Hard questions.
26: In the Ukraine.
25: 30 years of trust.
26: In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. I am Mr. Trump.
25: Vishnu Shukla.
27: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. And as always, when it's a big story, when it's something that you need to know about the context, about the facts of what's happening, the buck stops here. Who is the idiot? Who's the student? And who is the andbhakt? That's a question we must ask ourselves today. For 36 days, an agitation took place in our country where the youth raged against the machine. A machine that is leaky and where futures of lakhs of students depend on whether someone will choose to do their job honestly or not on that day. And that is why Gen Z hit the streets looking for, demanding solutions. And after all of that labor, for more than a month, what happened? An amended bill was to be brought in with stricter provisions and harsher penalties to ensure that these paper leaks, which have angered our students, these paper leaks are controlled. That anti-paper leak bill was passed today in Parliament. But was there any value addition at all? Why was it brought to Parliament? So that there would be debate, there would be suggestions, that the bill would be improved in some manner,

0: before it was passed. But most of the time was lost to commotion, sloganeering and unrelated comments about Gaumutra, Anbhak and Ayashi.
1: The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry.
2: Yes.
1: Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. So these are the three categories. Student, and who follows the now.
3: बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है. शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं. अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं.
4: एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की तीन कैटेगरी बताई कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है. दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है. और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है जो इडियट को भगवान मानता है. हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स. None of the students in this country are idiots or andhbhakts.
0: By the way, for anyone who is interested, the word idiot is officially unparliamentary in India, depending on the context and ruling of the presiding officer of the House. Even in the UK, in May 2012, Prime Minister David Cameron was ordered by the Speaker to withdraw the word idiot after referring to Ed Balls as a muttering idiot during the Prime Minister's questions. Cameron complied and substituted the insult with a political critique. Be that as it may, in India, idiot ended up being word of the day inside our parliament. And what happened? When the debate was happening, rather than reforms, the focus of both sides was clear. For the Congress, this was an opportunity to not just paint the government as anti-student, but also bring in the RSS angle of how the Sangh interferes in the education policy of the country. What does this have to do with paper leaks is anyone's guess. For the BJP, it was more important to dodge the issue of police excesses and claim the resignation of Dharmendra Pradhan as the government's sensitivity rather than the Congress's success. But in this heated back and forth, seeking of resignations and demands of an apology, guess who actually ended up being an idiot?
1: And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car, like that, looking. Shaking.
5: जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है. हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है. इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है.

0: reforms and how to manage this issue of paper leaks, which I am afraid, and I hope I am proved wrong by time, is a very difficult creature to stop. And despite this law, let's see how paper leak issue is going to be plugged. So I really wish that the paper leak stops, but a law will prevent that. I have my doubts about it. But yes, I agree there should have been a more meaningful discussion. But what we are seeing in Parliament, and not in this session, but last decades, at least two decades, all through the UPA and all through the NDA rule since 2014, that when the opposition smells blood or when they see an opportunity, they will go for the government's jugular. Mm. Now, whether they will succeed, but this time today, when Rahul Gandhi spoke in the Parliament and there's such a UN cry has been raised about this unparliamentary word, the fact of the matter is that he did strike a chord somewhere where it hurts. Mm. This whole thing about now trying to twist this issue that he has called 140 crore people idiots or all students idiots is not true. What he said was a very political statement, that there is a category of people who are students, who believe in learning, who believe in changing their opinion, who are happy to modify and amend their stance. And there is another category of people whom he described as idiot, and third one is an anbhakt.
1: Now, so who's he calling anbhakt? Who's the anbhakt?
0: The anbhakt is very much now part of... So the here, Padmaja, come on, don't be so innocent also.
1: Arre sir, I am innocent, but I'm asking for your guidance. Who's the anbhakt?
0: Political and it. We all know who anbhakt is. It's in the political idiom for last decade or so.
1: Mm.
0: The one side believers of BJP is referred to by the opposition as anbhakt. I think by creating this issue. Now,
1: so, aren't you then talking down to the BJP voters as andbhakt, thereby ensuring that they are never going to be Congress bhakt in the future? Agar aaj koi BJP ka voter hai aur aapne usko andbhakt bula diya, to wo to zindagi bhar unhi ka andbhakt rahega na? Why should they vote for the Congress?
0: Arey to bhai, nahi dega. How do I know and how do I care very honestly? Ki wo Congress ko dega ki nahi dega, kahan jayega? The thing is that there should have been an equally smart or with a funny bone or a satirical reply from the BJP side.
1: Okay, before you respond, Shehzad, I want to bring in Harshvardhan Tripathi. Truth is ki Rahul Gandhi ne wahi idiom use kiya hai jo ab political bhasha mein istemal kiya jata hai. Gen Z isko istemal karti hai.
0: Common parlance hai
1: ki ek taraf hota hai student/youth aur dusri taraf hota hai andbhakt.
0: Gen Z नहीं, सारा एंटी बीजेपी,
1: सारा एंटी बीजेपी, सिर्फ Gen Z ही नहीं, मिलेनियल्स और बूमर्स भी, तो वो सिर्फ आम आदमी की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे हर्षवर्धन,
0: तो पप्पू टप्पू कहते रहते हैं
1: हर्षवर्धन जी, अगर पप्पू बुला सकते हैं तो अंधभक्त क्यों नहीं? हर्षवर्धन जी, देन शहजाद. यस,
2: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में तो इस तरह की जो वोकेबलरी है या जो इस तरह के ऑप्टिक्स हैं वो क्रिएट किए ही जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. और उसमें जब आप जाते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी वोकेबलरी आपके काम आ रही है या आपके उलट जा रही. फॉर एग्जाम्पल, जो राहुल गांधी ने किया है वो सबसे बेहतर वही कर सकते थे, क्योंकि आज तक राहुल गांधी की एक भी स्पीच नहीं है. डरो मत, भय मुद्रा, वो कौन सी कहानी सुना रहे थे, सुनाते सुनाते भटक गए मणिपुर पर, यानी किसी भी मौके पर
1: कलावती
2: 20 साल से अधिक के वो पार्लियामेंटेरियन हो गए, एक भी स्पीच राहुल गांधी की नहीं. ये वो कलावती भी याद है, एक भी स्पीच राहुल गांधी के ऐसी बड़ा इंपैक्टफुल बोला. चलो बूमर, जूमर, मिलेनियल, अल्फा, जिसको भी आप कह रहे हो, पीएम तो बूमर से जूमर तक कनेक्ट कर ले गए. वो बूमर की कैटेगरी में आएंगे
1: नहीं, पर वही तो वो कह रहे हैं ना, पीएम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो इतने सैकड़ों बच्चे सड़क पे आ गए, क्योंकि अब ये सरकार नहीं कर पा रही है जो 2014 में बीजेपी ने किया था, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू पप्पू पप्पू पप्पू. अब राहुल गांधी को लग रहा है कि उसी स्थिति में ये सरकार है, तो अब मैं आपको अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त कह के आई विल ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट.
2: मैं यही आपको, आप ठीक जगह लेकर आई. पहली बात यह कि पीएम या ये सरकार नहीं कनेक्ट कर पाई, इसीलिए इतना बड़ा मूवमेंट हुआ। लेकिन चार दिनों में 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग अगर पीएम को इंस्टा पर फॉलो करने लगे तो वो तो जेंजी ही होगा ना। अभी तो इधर वाले तो बहुत ज्यादा चलाना ही नहीं जानते इंस्टा, उनको समझ में नहीं आता। यानी 40 लाख लोग अगर इतनी जल्दी कन्वर्ट हो गए तो ये एक बड़ा आंकड़ा है डेटा के लिहाज से देखें। लेकिन जो बेसिक बात है, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, राहुल गांधी के भाषण ढंग के नहीं होते, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। और मुझे लगता है ठीक है, उनको अपनी कमजोरी पता चल गई है तो उनको लगता है हमको अपनी ऑडियंस को एड्रेस करना है, और ये ठीक है, अंधभक्त उनको भला क्यों वोट देगा। लेकिन जरा सोचिए, इसी टीवी की डिबेट में लगातार क्या कहा जा रहा था, हेमंत विश्व शर्मा को अपने एक मंत्री की बेटी पर सफाई देनी पड़ी कि भाई ठीक है हमारा मंत्री है, लेकिन उसका मन किया, वो तो कहां से थी, वो तो अंधभक्त फैमिली से थी। अपराजिता सारंगी की बेटी पर इतनी चर्चा हुई, तो दरअसल क्या है, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं वो तो ओपन टू एनी आइडिया है, वो तो हर तरह की चीजों को सुनता है, समझता है, मोदी को भी क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जब राहुल गांधी उसको इस तरह से इडियट और अंधभक्त दो कैटेगरी में बांटेंगे, ये एकेडमिक डिबेट नहीं थी ना यूनिवर्सिटी की कि एक लर्नर होता है, एक इडियट होता है और एक अंधभक्त होता है, उसमें भी दूसरी कैटेगरी हो सकती। फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी क्या है, राहुल जी तो आज तक कुछ लर्न नहीं कर पाए, स्टूडेंट तो वो है नहीं, प्रियंका जी क्या है, तो क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं। और मुझे लगता है जब आप इस तरह से इडियट और अंधभक्त कैटेगराइजेशन करते हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं वो ठीक ऐसे ही है, जैसे सुरजेवाला ने कहा जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस है। कमाल है।
1: बट यू नो व्हेन यू मेक दीस कैटेगरीज, एंड आई एम सो ग्लैड यू मेंशनड दोस टू एग्जांपल्स फ्रॉम असम एंड ओडिशा, दैट व्हेन यू फ्रेम द आर्ग्यूमेंट लाइक दिस, देयर विल बी सम इन योर ओन लीडर्स फैमिलीज हु विल से हम तो अंधभक्त नहीं है, मे बी दे फ्लिप, maybe they go over to the Congress's side, maybe they say अरे हम अंधभक्त नहीं, हम स्टूडेंट होना चाहते हैं। राहुल जी की बात सुनो,
3: अरे पद्मजा ज्यादा दूर मत जाओ, हेमंत बिस्व शर्मा कैबिनेट तक मेरे घर में है, माय ब्रदर इज लीडिंग द कैंपेन ऑन E20, वो रोज E20 पे गाली दे रहा है, तो कैसा अंधभक्त परिवार, माय मदर डजंट लिसन टू माय पॉलिटिकल व्यू, शी अलाइंस विद तहसीन्स व्यू, ये कैसे अंधभक्त हुए हम?
1: Who knows, maybe राहुल गांधी will be Monday,
3: just let me complete द प्रॉब्लम विद संजीव श्रीवास्तव इज कि उनकी वाणी इतनी मीठी है कि सुन के डायबिटीज हो जाता है, पर वो बात जो है ना डायबिटीज से ज़्यादा खतरनाक है। आई टेल यू वाई। राहुल जी के लिए तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि इट्स ए पॉलिटिकल जाइब, बट कंगना हैज़ टू बी मैनस्प्लेन दैट हर जाइब इज नॉट पॉलिटिकल जाइब, इट इज़ फॉर एंटायर जनरेशन, ऑल्दो शी स्पेसिफिकली सेड इट कि इट इज़ फॉर द अब्यूसिव पीपल हु हैव अब्यूज, वो देखो लिखा हुआ है, बट देन देयर वी हैव टू मैनस्प्लेन टू कंगना दैट यू हैव सेड इट अगेंस्ट द एंटायर कम्युनिटी, बट राहुल गेट्स अ फ्री पास बिकॉज ही belongs to a family. Kangna bichari aayi kisi ghar se nahi hai, bade ghar se. Dusri baat I want to ask, this is the basket of deplorables moment. Hillary Clinton once said that everybody who is a non-democrat voter, they are basket of deplorables. And the problem with the Congress first family is, in democracy they are so arrogant and samanti soch, main to raha hun unke saath, when they lose the election they don't think mere mein kami hai, EVM mein kami hai ya voter mein kami hai. Now the entire category of voter is andhbhakt. Wah wah wah wah wah. Aapki thata thaiya na kare to andhbhakt ho gaye. Last point I want to make, Modi is not connected. Modi ko 500 million view mila, chodo wo. बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, HCU, ABVP wins, HCU, ABVP wins, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ABVP wins, जादवपुर, ABVP wins, पंजाब यूनिवर्सिटी, नो कनेक्ट विद बीजेपी, ठीक है भाई, एंड राहुल हु लूजेस 99 इलेक्शंस इज कनेक्टेड बिकॉज ही यूजेस फाउल लैंग्वेज। Great
1: है, but that was before Jantar Mantar, na? Maybe things change after Jantar Mantar. Rahul Gandhi is saying Jantar Mantar might be the tipping point where things are going to start turning in their direction because Gen Z is going to start
3: changing. Padmaja ji, aisa hai ki I have also saw one thing. एक second, 10 seconds Harshvardhan ji. ऐसे आए थे वो, हमने पिच तैयार कर दी किसान आंदोलन की, अब ये पिच तैयार है, यूपी चुनाव हार जाएंगे क्योंकि इन्होंने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, याद आ रहा है वो कौन थे?
1: ओके
3: अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये दिपके एंड सौरभ दास स्टिक टू देयर वर्ड, केरला और कर्नाटका में दे हैव पुट केसेस ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड दे हैव नॉट सैक्ड द एजुकेशन मिनिस्टर, वॉक द टॉक मिस्टर सौरभ दास।
1: ओके वेरी क्विकली लेट संजय झा रिस्पॉन्ड, हर्षवर्धन जी एंड शहजादा आर सेइंग हाउ कैन यू सस्पेक्ट द कनेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वेयर मिलियंस आर वॉचिंग, द हाईएस्ट वॉच रील इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, they are watching and voting. Sanjay Jha,
4: Let's not even talk about Mr. Modi's reels. I think end of day, I think if the Prime Minister has to shoot a selfie video to talk to the students, and what a hypocritical BJP. For the viewers watching the program, Mr. Modi goes at midnight to placate the students, and his president of the party calls the same protesters as Tukre Tukre gang, and RSS...
3: No, he's not done that. He has not said this. Well, you know, Sanjay, this will not fly. Show me the statement, quote the statement.
4: Most repugnant statement.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: हिंदुस्तान

0: Renatu Sataranga. Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura. Rang, rang, rang, rang, rang, rangine, rang, rangine, re, de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
1: Bojo paints, rang bana rahe.
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आजकल मसाला।
10: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
11: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस तेल में।
13: Put up during the anti-NEET protest. The police have issued notices to several ex-accounts over the abusive posts that targeted Prime Minister during the protests that were held by the CJP. Floods to batter Assam, over 75 people killed, more than 3 lakh are affected. Rescue and relief operations continue amid the devastation.

0: होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आर्टियर मसाला।
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
15: This location from Tel Aviv
7: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
16: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
17: The Ayatollah Khamenei is gone.
18: There has been a missile attack right behind you.
19: And we need to rush into a shelter.
20: Heading there.
21: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
7: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
22: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
23: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
24: This isn't just about

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदू

0: देश का टायर जेके टायर।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में,
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: राजा मसाला।

0: जाएगा। जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
1: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
0: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं।

0: hear what's going on in his ministry and he's incompetent, in either case, he has to go.
1: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
2: बीजेपी एमपी कंगना रनौत रिमेन्स इन द न्यूज ओवर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट द जेन जी प्रोटेस्टर्स, स्पेसिफिकली हर अटैक अगेंस्ट यंग वुमेन। Now, with a huge backlash and then her response and counter-response as well, she called out protesters using abusive language and said that we had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place, and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Kokhru Janata Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
3: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियाँ देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है, लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं, बच्चे उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं।
4: बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
5: उनको कौन सीरियसली लेता है?
4: जी बताइए, ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
5: उनको कौन सीरियसली लेता है?
4: जी बताइए।
6: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है, उनके तो कुछ वीडियोज भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था।
7: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में, सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया।
8: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग ही हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर यू नो मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
2: Well, this is not the first time that Kangna has passed such controversial remarks. Let's now take

0: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
2: रियली
1: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: All right, fireworks erupted in Parliament today as BJP and opposition versus the banter between both of them continued over the students' protest. However, amid heavy sloganeering, the exam reform bill was passed by voice vote. Rahul Gandhi said that every Indian should be proud of what India's youth were able to achieve, adding that even the BJP should respect the expression of the youth. Rahul also slammed RSS, accusing them of destroying the education system and choosing selective history for students to read. The LOP also questioned Shah's absence from Parliament and demanded an apology from the government over police violence, while also alleging that he was not given enough time to speak. Meanwhile, the BJP has now hit back at Rahul for the use of unparliamentary language, asking if he called the protesting students idiots. The BJP also claimed that Rahul was given enough and more time, but he could not put his point forward.
1: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
2: उन्होंने आक्षेप लगाया कि I was not allowed to speak. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार-बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
1: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
2: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए. और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. यह आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
3: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ऑर्डर्ड इट, ही इज कल्पेबल. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. ही आइदर ऑर्डर्ड इट और ही हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट. इन आइदर केस ही हैज टू गो.
2: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया. आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया. सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं. राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी. और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी.
0: बीजेपी एमपी कंगना रनौत रिमेन्स इन द न्यूज ओवर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट द जेन जी प्रोटेस्टर्स, स्पेसिफिकली हर अटैक अगेंस्ट यंग वुमेन. Now, with a huge backlash and then her response and counter-response as well, she called out protesters using abusive language and said that We had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place, and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Kokhru Janata Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
4: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बुजुर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियाँ देंगे, उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं.
5: कंगना रनौत ने भी जेंजीज को
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए, कंगना रनौत ने भी जेंजीज को
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए.
7: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोज भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था.
8: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है. गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है. दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं. तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है. और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है. लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया.
9: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग ही हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं. जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी. इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए. आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर यू नो मायने रखता है. अदरवाइज कोई फायदा नहीं.
0: Well, this is not the first time that Kangna has passed such controversial remarks. Let's now take you through her previous statements. First up, in 2024, she passed out a statement. Let's now tell you about Kangna's remarks. Farmers' agitation could have led to a Bangladesh-like situation. The BJP then rebuked. Now, this is happening in August 2024. BJP says Kangna's remark, not the opinion of the Bharatiya Janata Party. Apart from that, she says bodies were hanging and rapes were taking place. BJP has distanced itself from the statements given out by Kangna Rnaut. BJP says BJP expresses disagreement, with Kangna's remarks. She goes on to pass more such controversial statements. In yet another incident, she says China, America, foreign powers at work. BJP again distances itself, says Kangna not authorized to make statements on policy issues, especially that of the Bharatiya Janata Party. Apart from this, these are some of the few statements which Kangana Ranaut has made, which are extremely controversial, and how the Bharatiya Janata Party has also distanced itself. But there's more. 1947 freedom was bheek. To that, BJP says Kangana's remarks insult to freedom fighters and sacrifice. There is more to the list. The next statement, she says, real freedom came in 2014 with Modi government. BJP says nobody has a right to pass negative remarks on freedom fight. And these are the list of few statements. And it just shows you how the Bharatiya Janata Party has constantly distanced itself from such controversial remarks by Kangana Ranaut. Well, the BJP has now launched a fresh social media campaign which is aimed at connecting with Gen Z. And that is through a new promotional video. In this video, the latest addition to the campaign came from the BJP's Haryana unit, which released a reel featuring a conversation between a group of youngsters in a gym about the student protest at Delhi's Jantar Mantar. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Modi's leadership. In an apparent reference to the recent resignation of Dharmendra Pradhan, the video says that someone's resignation is not a personal victory for any individual, but a symbol of the strength of democracy.
10: Dude, kuch bhi ho, hame rukkar past se inspiration leni chahiye. You haven't even clocked, but India was like when you were 10.
11: Sir, aap to bilkul mere dad ki tone mein bol rahe ho. Tum logo ne old India dekha hai.
12: बॉम्ब धमाके आतंकी हमले करप्शन की हेडलाइंस ये वो
10: अरे गलत भी तो नहीं कहते तुम्हारे पेरेंट्स आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फोन है घर से निकलते ही सामने मेट्रो है वेकेशन पे जाना हो तो देहरादून एक्सप्रेसवे है हाई स्पीड ट्रेन्स हर छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स पढ़ने के लिए इतने सारे IIT IIM एम्स इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ मेडिकल सीट्स इतना बिल्ड करने में पहले देश को 50-50 साल लग जाते थे दो दो जनरेशन निकल जाते देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में
13: क्या मजबूत तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया
10: इस्तीफा जंतर मंतर

0: की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको।
1: All right, this is the center's Gen Z outreach. Let's now tell you about what all strategies has the center taken. First up, social first strategy. Here, we talk about the Gen Z style communication of the government. The Prime Minister is perhaps seen using IG style videos as well. There's also sitcom references and gym banter. You just saw that video being released by the Haryana BJP cell. And also interactive content. Moving on, let's now specifically tell you about Prime Minister Narendra Modi's digital outreach. First up, selfie style videos, which we've seen so many that the Prime Minister has been uploading. It is perhaps focused on outreach towards the youngsters, towards the students. Social media engagement is also in focus, especially through Instagram. So what perhaps is the government's digital playbook? First up, IG first outreach, Instagram friendly outreach. Second, youth focused messaging. And third, shareable content as well. Well, but from the parliament speeches to Instagram reels, India's political class is now speaking a new language, the language of Gen Z. As the anti-paper leak bill was passed in the Lok Sabha today, MPs are now dropping Gen Z slang. Take a look.
2: अगर मैं जेंजी की भाषा को बरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution.
3: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट.
4: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए.
5: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है.
6: इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर. शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा.
1: And well, these aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. You just heard all those bites by the parliamentarians using Gen Z language. This, of course, at a time when the government has passed its anti-paper leak bill in the Lok Sabha. MPs are now increasingly using Gen Z phrases and speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
2: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
3: आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, fear of missing out.
4: पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया.
6: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है.
7: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, MPs are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
2: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism.
3: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? काम चले गए पीएम आवास पर. अरे सुनो, आगे आगे आगे
8: आप अपना समाप्त.
3: फोमो होने के बाद, फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू.
7: The outreach goes beyond parliament. Prime Minister Narendra Modi's Instagram strategy has become a talking point, with reels often posted late at night to maximize engagement among the young users.

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
3: This location from Tel Aviv
2: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
4: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
5: The Ayatollah Khamenei is gone.
6: There has been a missile attack right behind me,
7: and we need to rush into a shelter.
8: Heading there.
9: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: reality of what happened today.
1: This is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakt.
2: शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में कुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में MIA हो गया।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
4: वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूँ, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने।
5: देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है।
6: नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक लॉ, अ वेरी रोबस्ट लॉ व्हिच टुडे इज बीइंग इवन मोर फॉर्मिडेबल। ऑल दैट द ऑपोजिशन डिड वाज चेज पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म। अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। UPA का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर।
0: सो हैज राहुल गांधी चैनल्ड द एंग्विश एंड एंग्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एबल मैनर, और हैज ही सिंपली ड्रॉन द स्पॉटलाइट ऑन हिमसेल्फ by using words like andhbhakt and idiot and other words that were finally expunged from parliament and made this whole issue a kind of tutu meme between Rahul Gandhi and the government, allowing the substantive issue of student plight to be completely drowned out. Needless to say, even a debate over the paper leaks has not happened as a result of all this acrimony. Let's debate tonight. Pradeep Bhandari, spokesperson of the BJP, Rashid Kidwai, senior journalist and author, Rajat Sethi, political analyst, and advocate Avishkar Singhvi, also a political analyst. Pradeep, I want to kick it off with you. Why is the BJP attacking Rahul Gandhi for raising a student issue? Do you not think that this was a legitimate issue to raise? बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है?
7: वेल शिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द आउटसेट आई हैव द कॉपी ऑफ द हिस्टोरिक बिल व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा एंड द पार्लियामेंट, व्हिच इज द फर्स्ट बिल व्हिच स्पीक्स अबाउट 10 करोड़ फाइन, 10 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड 3 मंथ्स ऑफ ट्रायल फॉर एनीवन हु इज कन्विक्टेड और अटेम्प्ट्स टू डू अ पेपर लीक।

0: as I've just shown you, they don't even really talk about students. So what hope for flood victims in faraway Assam? Parliament can find hours for partisan combat, righteous anger, and performative political theatre to relaunch careers and give a defensive government escape avenues, but it couldn't find even a few minutes to acknowledge the year's biggest humanitarian tragedy unfolding in real time. The old man whose pictures I just showed you, numbed by the tragedy and wading out of his home, now a face of the people of Assam. Just look at him. He doesn't need applause for his resilience. He and the people of Assam need relief. They need attention. They need acknowledgement. They need the House of the People for Parliament to at least recognize that they exist. If Parliament cannot pause even briefly for a tragedy of this scale, then it isn't just Assam that has been abandoned. It is the very idea of representation. Trending slang is now echoing inside Parliament as well. Everyone wants a piece of the Gen Z pie. It's actually gotten pretty embarrassing. Political parties are packaging their campaigns for social media. Leaders are speaking the language of young voters. Gen Z lingo is being embraced and espoused and used in Parliament. Frankly, very cringe in my opinion. The protests over leaks have underscored the growing political influence of India's youth, the Gen Z as they're called, forcing parties across the spectrum to rethink how they communicate and how they connect.
1: Modi ji clocked it and provided a legislated solution.
2: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
3: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया।
4: हम जो डिलुलु के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलु में ना रहना कि वो आपके साथ है।
5: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into Parliament. As the government pushed its anti-paper leak bill, MPs increasingly used Gen Z phrases in speeches.
1: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislated solution.
2: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA missing in action. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको FOMO हुआ, FOMO. Fear of missing out.
3: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए.
6: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां. एक नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है.
4: इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर. शायद हम जो डिलुलु के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलु में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा.
5: द आउटरीच गोज बियॉन्ड पार्लियामेंट. बीजेपी ऑल्सो पोस्टेड दिस वीडियो एम्ड एट इन्फॉर्मिंग द जेन जी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द यूपीए एरा.
7: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है. सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको. चलो मिलकर देश भी बनाते हैं और बॉडी भी. फ्रेंड्स,
5: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी हैज आल्सो बिकम अ टॉकिंग पॉइंट विद रील्स ऑफन पोस्टेड लेट एट नाइट टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट अमंग यंग यूजर्स. फ्रॉम डिजिटल कैंपेन्स टू यूथ फोकस्ड मैसेजिंग, द टारगेट ऑडियंस इज अनमिस्टेकेबल. India's Gen Z.
8: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया.
9: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक विध कदम उठा रही है.
5: The urgency isn't just about optics. The nationwide students' protest over exam paper

0: others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
1: उन्होंने आक्षेप लगाया कि I was not allowed to speak. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए.
0: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
1: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. Abhi to kuch din pehle hi court mein Shivraj Singh Chauhan ji se maafi manga tha, likhit mein maafi manga tha ki mujhe please maaf kar dijiye. और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. यह आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
2: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ऑर्डर्ड इट, ही इज कल्पेबल. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. ही आइदर ऑर्डर्ड इट और ही हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट. इन आइदर केस ही हैज टू गो.
1: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया. आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया. सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं. ये चलेगा नहीं. राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी.
3: बीजेपी एमपी कंगना रनौत रिमेन्स इन द न्यूज ओवर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट द जेन जी प्रोटेस्टर्स, स्पेसिफिकली हर अटैक अगेंस्ट यंग वुमेन. नाउ विद अ ह्यूज बैकलैश एंड देन हर रिस्पॉन्स एंड काउंटर रिस्पॉन्स एज वेल. She called out protesters using abusive language and said that we had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place, and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Cockroach Janata Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
4: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियाँ देंगे, उनके मान को हानि करेंगे, मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं।
5: बताइए कंगना रनौत ने भी जेंजीज को लेकर
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए कि बताइए कंगना रनौत ने भी जेंजीज को लेकर
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए।
7: देखिए कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है, उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था।
8: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया।
9: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर यू नो मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
3: Well, this is not the first time that Kangna has passed such controversial remarks. Let's now take you through her previous statements. First up, in 2024, she passed out a statement. Before that, let's now tell you about Kangna's remarks. Farmers' agitation could have led to a Bangladesh-like situation. The BJP then rebuked. Now, this is happening in August 2024. BJP says Kangna's remark, not the opinion of the Bhartiya Janata Party. Apart from that, she says bodies were hanging and rapes were taking place. BJP has distanced itself from the statements given out by Kangna Rnaut. BJP says BJP expresses disagreement, with Kangna's remarks. She goes on to pass more such controversial statements. In yet another incident, she says China, America, foreign powers at work. BJP again distances itself, says Kangna not authorized to make statements on policy issues, especially that of the Bharatiya Janata Party. Apart from this, these are some of the few statements which Kangna Rnaut has made, which are extremely controversial, and how the Bharatiya Janata Party has also distanced itself. But there's more. 1947 freedom was bheek. To that, BJP says Kangna's remarks insult to freedom fighters and sacrifice. There is more to the list. The next statement, she says, real freedom came in 2014 with Modi government. BJP says nobody has a right to pass negative remarks on freedom fight. And these are the list of few statements. And it just shows you how the Bharatiya Janata Party has constantly distanced itself from such controversial remarks by Kangna Rnaut. Well, the BJP has now launched a fresh social media campaign which is aimed at connecting with Gen Z. And that is through a new promotional video. In this video, the latest addition to the campaign came from the BJP's Haryana unit, which released a reel featuring a conversation between a group of youngsters in a gym about the student protest at Delhi's Jantar Mantar. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Modi's leadership. In an apparent reference to the recent resignation of Dharmendra Pradhan, the video says that someone's resignation is not a personal victory for any individual, but a symbol of the strength of democracy.
10: Dude, kuch bhi ho, hame rukkar past se inspiration leni chahiye. You haven't even clocked, but India was like when you were 10.
11: Sir, आप तो बिल्कुल मेरे डैड की टोन में बोल रहे हो. तुम लोगों ने ओल्ड इंडिया देखा है?
12: बम धमाके, आतंकी हमले, करप्शन की हेडलाइंस, ये वो.
10: अरे गलत भी तो नहीं कहते तुम्हारे पेरेंट्स. आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फोन है, घर से निकलते ही सामने मेट्रो है, वेकेशन पे जाना हो तो देहरादून एक्सप्रेसवे है, हाई स्पीड ट्रेन्स, हर छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स, पढ़ने के लिए इतने सारे IIT, IIM, AIIMS, इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ मेडिकल सीट्स. इतना बिल्ड करने में पहले देश को 50-50 साल लग जाते थे, दो दो जनरेशन निकल जाते. देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में.
13: हाँ, क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
10: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है. सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको.
3: ऑलराइट, दिस इज द सेंटर्स जेन ज़ी आउटरीच. लेट्स नाउ टेल यू अबाउट व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज द सेंटर टेकन. फर्स्ट अप, सोशल फर्स्ट स्ट्रेटजी. हियर we talk about the Gen Z style communication of the government. The Prime Minister is perhaps seen using IG style videos as well. There's also sitcom references and gym banter. You just saw that video being released by the Haryana BJP cell. And also interactive content. Moving on, let's now specifically tell you about Prime Minister Narendra Modi's digital outreach. First up, selfie style videos, which we've seen so many that the Prime Minister has been uploading. It is perhaps focused on outreach towards the youngsters, towards the students. Social media engagement is also in focus, especially through Instagram. So what perhaps is the government's digital playbook? First up, IG first outreach, Instagram friendly outreach. Second, youth focused messaging. And third, shareable content as well. Well, but from the parliament speeches to Instagram reels, India's political class is now speaking a new language, the language of Gen Z. As the anti-paper leak bill was passed in the Lok Sabha today, MPs are now dropping Gen Z slang. Take a look.
14: अगर मैं जेंजी की भाषा को बरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution.
15: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट.
16: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए.
17: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है.
18: इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर. शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. yes. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा.
3: And well, these aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. You just heard all those bites by the parliamentarians using Gen Z language. This, of course, at a time when the government has passed its anti-paper leak bill in the Lok Sabha. MPs are now increasingly using Gen Z phrases and speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
14: मोदी जी clocked it and provided a legislative solution.
15: आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, fear of missing out.
16: पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया.
18: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है.
19: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, MPs are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
14: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, All that the opposition did was chase political opportunism.
15: 37 din tak to ye jantar mantar nahi gaye, to inko MIA ho gaya. MIA kya hai? MIA missing in action. Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Are bacche yahan par andolan kar rahe hain, hum kya kar rahe hain? To hum chale gaye PM awas par. अरे सुनो, आगे आगे आगे
9: आप अपना समाप्त
15: फॉर्मो होने के बाद लव इनको डेलुलू हुआ डेलुलू.
19: The outreach goes beyond parliament. Prime Minister Narendra Modi's Instagram strategy has become a talking point, with reels often posted late at night to maximize engagement among the young users. From digital campaigns to youth-focused messaging, the target audience is unmistakable. India's Gen Z. The urgency isn't just about optics. The nationwide students' protest over exam paper leaks have highlighted a new political reality. Young Indians are no longer passive observers. They are demanding transparency, accountability, better education, and more jobs. And they are shaping the national conversation. For political parties, the message is clear. Winning elections is no longer just about traditional vote banks. Mobilizing Gen Z could be just as important. A generation raised on smartphones, social media, and instant access to information is becoming one of the country's most influential electoral forces. With Gen Z set to become India's largest adult generation before the next general election, every major political party is recalibrating its message. The battle for India's future may well begin with the battle for its youngest voters. Bureau Report, NDTV.
3: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. Lots more lined up for you.

0: with a funny bone or a satirical reply from the BJP side.
1: Okay, before you respond, Shehzad, I want to bring in Harshvardhan Tripathi. Truth is कि राहुल गांधी ने वही idiom use किया है जो अब political भाषा में इस्तेमाल किया जाता है. Gen Z इसको इस्तेमाल करती है
0: कि भाई common parlance है
1: कि एक तरफ होता है student/youth और दूसरी तरफ होता है अंधभक्त.
0: Gen Z नहीं, सारा anti-BJP.
1: सारा anti-BJP.
0: सारा anti-BJP.
1: सिर्फ Gen Z ही नहीं, millennials और boomers भी. तो वो सिर्फ आम आदमी की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे. हर्षवर्धन
0: तो पप्पू टप्पू कहते रहते हैं.
1: हर्षवर्धन जी, अगर पप्पू बुला सकते हैं तो अंधभक्त क्यों नहीं? हर्षवर्धन जी, देन शहजाद. यस,
2: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं. और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में तो इस तरह की जो वोकैबुलरी है या जो इस तरह के ऑप्टिक्स हैं वो क्रिएट किए ही जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. और उसमें जब आप जाते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी वोकैबुलरी आपके काम आ रही है या आपके उलट जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, जो राहुल गांधी ने किया है वो सबसे बेहतर वही कर सकते थे, क्योंकि आज तक राहुल गांधी की एक भी स्पीच नहीं है. डरो मत, भय मुद्रा, वो कौन सी कहानी सुना रहे थे, सुनाते सुनाते भटक गए मणिपुर पर. यानी किसी भी मौके पर
1: कलावती
2: 20 साल से अधिक के वो पार्लियामेंटेरियन हो गए, एक भी स्पीच राहुल गांधी की नहीं. ये वो कलावती भी याद है, एक भी स्पीच राहुल गांधी की ऐसी बड़ा इंपैक्टफुल बोला. चलो बूमर, जूमर, मिलेनियल, अल्फा, जिसको भी आप कह रहे हो, पीएम तो बूमर से जूमर तक कनेक्ट कर ले गए. वो बूमर की कैटेगरी में आएंगे
1: नहीं, पर वही तो वो कह रहे हैं ना, पीएम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो इतने सैकड़ों बच्चे सड़क पे आ गए, क्योंकि अब ये सरकार नहीं कर पा रही है जो 2014 में बीजेपी ने किया था. राहुल गांधी को पप्पू पप्पू पप्पू पप्पू पप्पू, अब राहुल गांधी को लग रहा है कि उसी स्थिति में ये सरकार है. तो अब मैं आपको अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त कह के आई विल ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट.
2: मैं यही आपको, आप ठीक जगह लेकर आई. पहली बात यह कि पीएम या ये सरकार नहीं कनेक्ट कर पाई, इसीलिए इतना बड़ा मूवमेंट हुआ. लेकिन चार दिनों में 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग अगर पीएम को इंस्टा पर फॉलो करने लगे तो वो तो Gen Z ही होगा ना. अभी तो इधर वाले तो बहुत ज्यादा चलाना ही नहीं जानते इंस्टा, उनको समझ में नहीं आता. यानी 40 लाख लोग अगर इतनी जल्दी कन्वर्ट हो गए तो ये एक बड़ा आंकड़ा है डेटा के लिहाज से देखें. लेकिन जो बेसिक बात है, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, राहुल गांधी के भाषण ढंग के नहीं होते, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला. और मुझे लगता है ठीक है, उनको अपनी कमजोरी पता चल गई है, तो उनको लगता है हमको अपनी ऑडियंस को एड्रेस करना है, और ये ठीक है. अंधभक्त उनको भला क्यों वोट देगा? लेकिन जरा सोचिए, इसी टीवी की डिबेट में लगातार क्या कहा जा रहा था, हेमंत विश्व शर्मा को अपने एक मंत्री की बेटी पर सफाई देनी पड़ी कि भाई ठीक है हमारा मंत्री है, लेकिन उसका मन किया. वो तो कहां से थी, वो तो अंधभक्त फैमिली से थी. अपराजिता सारंगी की बेटी पर इतनी चर्चा हुई, तो दरअसल क्या है, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं वो तो ओपन टू एनी आइडिया है, वो तो हर तरह की चीजों को सुनता है, समझता है, मोदी को भी क्रिटिसाइज करता है. लेकिन जब राहुल गांधी उसको इस तरह से इडियट और अंधभक्त दो कैटेगरी में बांटेंगे, ये एकेडमिक डिबेट नहीं थी ना यूनिवर्सिटी की, कि एक लर्नर होता है, एक इडियट होता है और एक अंधभक्त होता है, उसमें भी दूसरी कैटेगरी हो सकती. फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी क्या है? राहुल जी तो आज तक कुछ लर्न नहीं कर पाए, स्टूडेंट तो वो है नहीं, प्रियंका जी क्या है, तो क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं? और मुझे लगता है जब आप इस तरह से इडियट और अंधभक्त कैटेगराइजेशन करते हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं वो ठीक ऐसे ही है, जैसे सुरजेवाला ने कहा जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस है. कमाल है.
1: बट यू नो व्हेन यू मेक दीस कैटेगरीज, एंड आई एम सो ग्लैड यू मेंशन दोस टू एग्जांपल्स फ्रॉम असम एंड ओडिशा, दैट व्हेन यू फ्रेम द आर्ग्यूमेंट लाइक दिस, देयर विल बी सम इन योर ओन लीडर्स फैमिलीज हु विल से हम तो अंधभक्त नहीं, आई डोंट नीड टू, मे बी दे फ्लिप, maybe they go over to the Congress's side, maybe they say अरे हम अंधभक्त नहीं, हम स्टूडेंट होना चाहते हैं. राहुल जी की बात सुनो.
3: अरे पद्मजा, ज्यादा दूर मत जाओ, हेमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट तक मेरे घर में है. माय ब्रदर इज लीडिंग द कैंपेन ऑन E20, वो रोज E20 पे गाली दे रहा है, तो कैसा अंधभक्त परिवार? माय मदर डजंट लिसन टू माय पॉलिटिकल व्यू, शी अलाइंस विद तहसीन्स व्यू, ये कैसे अंधभक्त हुए हम?
1: Who knows, maybe राहुल गांधी will be Monday, you will also
3: align. Just let me complete. द प्रॉब्लम विद संजीव श्रीवास्तव इज कि उनकी वाणी इतनी मीठी है कि सुन के डायबिटीज हो जाता है, पर वो बात जो है ना डायबिटीज से ज़्यादा खतरनाक. आई टेल यू वाई. राहुल जी के लिए तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि इट्स ए पॉलिटिकल जाइब, बट कंगना हैज टू बी मैंसप्लेन दैट हर जाइब इज नॉट पॉलिटिकल जाइब, इट इज फॉर एंटायर जनरेशन. ऑल्दो शी स्पेसिफिकली सेड इट कि इट इज फॉर द अब्यूसिव पीपल हु हैव अब्यूज्ड, वो देखो लिखा हुआ है, बट देन देयर वी हैव टू मैंसप्लेन टू कंगना दैट यू हैव सेड इट अगेंस्ट द एंटायर कम्युनिटी, बट राहुल गेट्स अ फ्री पास बिकॉज ही belongs to a family. Kangana bichari aayi kisi ghar se nahi hai, bade ghar se. Dusri baat I want to ask, this is the basket of deplorables moment. Hillary Clinton

0: All right, fireworks erupted in Parliament today as BJP and opposition versus the banter between both of them continued over the students' protest. However, amid heavy sloganeering, the exam reform bill was passed by voice vote. Rahul Gandhi said that every Indian should be proud of what India's youth were able to achieve, adding that even the BJP should respect the expression of the youth. Rahul also slammed RSS, accusing them of destroying the education system and choosing selective history for students to read. The LOP also questioned Shah's absence from Parliament and demanded an apology from the government over police violence, while also alleging that he was not given enough time to speak. Meanwhile, the BJP has now hit back at Rahul for the use of unparliamentary language, asking if he called the protesting students idiots. The BJP also claimed that Rahul was given enough and more time, but he could not put his point forward.
1: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
2: उन्होंने आक्षेप लगाया कि I was not allowed to speak. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार-बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
1: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
2: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए. और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. ये आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
3: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ऑर्डर्ड इट, ही इज कल्पेबल. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. ही आइदर ऑर्डर्ड इट और ही हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट. इन आइदर केस ही हैज टू गो.
2: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया. आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया. सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं. राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी.
0: बीजेपी एमपी कंगना रनौत रिमेन्स इन द न्यूज ओवर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट द जेन जी प्रोटेस्टर्स, स्पेसिफिकली हर अटैक अगेंस्ट यंग वुमेन. Now, with a huge backlash and then her response and counter-response as well, she called out protesters using abusive language and said that We had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place, and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Kokra Janta Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
4: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बुजुर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियाँ देंगे, उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं.
5: बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ को लेकर
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए, ये बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ को लेकर
6: उनको कौन सीरियसली लेता है?
5: जी बताइए.
7: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था.
8: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है. गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है. दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं. तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है. और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है. लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया.
9: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं. जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी. इसलिए

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break.

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
3: This location from
4: Welcome back. You're watching NETV 24/7 with me, Raisha Sehgal. There's lots lined up for you on the show, but first the headlines. Anti-paper leak bill passes in Lok Sabha, bill cleared by voice vote amid heavy opposition sloganeering. Rajya Sabha hurdle for reform bill next. BJP and Rahul lock horns over use of pellet guns. Rahul asks who issued orders. BJP says SDMs gave orders on ground. LOP refuses BJP's demand for apology over accusation. Kangna on warpath against Gen Z tells women don't get influenced by feminazis, labels protesters in abuse videos as gutter chap, immoral and vulgar. Centre submits response in Parliament on AI-171 crash probe, says Boeing's examination of the Dreamliner's fuel control switch locking mechanism found no abnormality. Assam flood death count rises to 75, over 3 lakh people still affected. Damage reported to houses, cows, sheds, schools and even Anganwadi centers. All right, fireworks erupted in Parliament today as BJP and opposition versus the banter between both of them continued over the students' protest. However, amid heavy sloganeering, the exam reform bill was passed by voice vote. Rahul Gandhi said that every Indian should be proud of what India's youth were able to achieve, adding that even the BJP should respect the expression of the youth. Rahul also slammed RSS, accusing them of destroying the education system and choosing selective history for students to read. The LOP also questioned Shah's absence from Parliament and demanded an apology from the government over police violence, while also alleging that he was not given enough time to speak. Meanwhile, the BJP has now hit back at Rahul for the use of unparliamentary language, asking if he called the protesting students idiots. The BJP also claimed that Rahul was given enough and more time, but he could not put his point forward.
5: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
6: उन्होंने आक्षेप लगाया कि I was not allowed to speak, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए.
5: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
6: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. Abhi to kuch din pehle hi court mein Shivraj Singh Chauhan ji se maafi manga tha, likhit mein maafi manga tha ki mujhe please maaf kar dijiye. और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. ये आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
3: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड इफ ही ऑर्डर्ड इट ही इज कल्पेबल. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. ही आइदर ऑर्डर्ड इट और ही हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट. इन आइदर केस ही हैज टू गो.
6: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया. आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया. सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं. ये चलेगा नहीं. राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी.
4: बीजेपी एमपी कंगना रनौत रिमेन्स इन द न्यूज ओवर हर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट द जेन जी प्रोटेस्टर्स, स्पेसिफिकली हर अटैक अगेंस्ट यंग वुमेन. नाउ विद अ ह्यूज बैकलैश एंड देन हर रिस्पॉन्स एंड काउंटर रिस्पॉन्स एज वेल. She called out protesters using abusive language and said that we had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Kokra Janta Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
7: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है, लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं.
8: बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
9: उनको कौन सीरियसली लेता है?
8: जी बताइए. ये बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
9: उनको कौन सीरियसली लेता है?
8: जी बताइए.
10: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके, तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था।
11: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया।
12: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर यू नो मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
4: Well, this is not the first time that Kangana has passed such controversial remarks. Let's now take you through her previous statements. First up, in 2024, she passed out a statement. Let's now tell you about Kangana's remarks. Farmers' agitation could have led to a Bangladesh-like situation. The BJP then rebuked. Now, this is happening in August 2024. BJP says Kangana's remark, not the opinion of the Bharatiya Janata Party. Apart from that, she says bodies were hanging and rapes were taking place. BJP has distanced itself from the statements given out by Kangana Ranaut. BJP says BJP expresses disagreement, with Kangana's remarks. She goes on to pass more such controversial statements. In yet another incident, she says China, America, foreign powers at work. BJP again distances itself, says Kangana not authorized to make statements on policy issues, especially that of the Bharatiya Janata Party. Apart from this, these are some of the few statements which Kangana Ranaut has made, which are extremely controversial, and how the Bharatiya Janata Party has also distanced itself. But there's more. 1947 freedom was bheek. To that, BJP says Kangana's remarks insult to freedom fighters and sacrifice. There is more to the list. The next statement, she says, real freedom came in 2014 with Modi government. BJP says nobody has a right to pass negative remarks on freedom fight. And these are the list of few statements. And it just shows you how the Bharatiya Janata Party has constantly distanced itself from such controversial remarks by Kangana Ranaut. Well, the BJP has now launched a fresh social media campaign which is aimed at connecting with Gen Z. And that is through a new promotional video. In this video, the latest addition to the campaign came from the BJP's Haryana unit, which released a reel featuring a conversation between a group of youngsters in a gym about the student protest at Delhi's Jantar Mantar. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Modi's leadership. In an apparent reference to the recent resignation of Dharmendra Pradhan, the video says that someone's resignation is not a personal victory for any individual, but a symbol of the strength of democracy.
13: Dude, kuch bhi ho, hume rukkar past se inspiration leni chahiye. You haven't even clocked, but India was like when you were 10.
14: Sir, aap to bilkul mere dad ki tone mein bol rahe ho. Tum logon ne old India dekha hai.
15: बॉम्ब, धमाके, आतंकी हमले, करप्शन की हेडलाइंस, ये वो।
13: अरे गलत भी तो नहीं कहते तुम्हारे पेरेंट्स। आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फोन है, घर से निकलते ही सामने मेट्रो है, वेकेशन पे जाना हो तो देहरादून एक्सप्रेसवे है, हाई स्पीड ट्रेन्स, हर छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स, पढ़ने के लिए इतने सारे IIT, IIM, एम्स, इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ मेडिकल सीट्स। इतना बिल्ड करने में पहले देश को 50-50 साल लग जाते थे, दो दो जनरेशन निकल जाते। देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में।
16: क्या मजबूत, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया?
13: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको।
4: All right, this is the center's Gen Z outreach. Let's now tell you about what all strategies the center taken. First up, social first strategy. Here We talk about the Gen Z style communication of the government. The Prime Minister is perhaps seen using IG style videos as well. There's also sitcom references and gym banter. You just saw that video being released by the Haryana BJP cell. And also interactive content. Moving on, let's now specifically tell you about Prime Minister Narendra Modi's digital outreach. First up, selfie style videos, which we've seen so many that the Prime Minister has been uploading. It is perhaps focused on outreach towards the youngsters, towards the students. Social media engagement is also in focus, especially through Instagram. So what perhaps is the government's digital playbook? First up, IG first outreach, Instagram friendly outreach. Second, youth focused messaging. And third, shareable content as well. Well, but from the parliament speeches to Instagram reels, India's political class is now speaking a new language, the language of Gen Z. As the anti-paper leak bill was passed in the Lok Sabha today, MPs are now dropping Gen Z slang. Take a look.
17: अगर मैं जेंजी की भाषा को बरो करूं देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन
18: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको एमआईए हो गया एमआईए क्या है एमआईए मिसिंग इन एक्शन आंदोलन क्यों किया आपने उनको फोमो हुआ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट
19: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए
20: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे वास्ते गुने हुईया एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है
21: इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं हमारे साथ भी नहीं है शोर शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा
4: And well, these aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. You just heard all those bites by the parliamentarians using Gen Z language. This, of course, at a time when the government has passed its anti-paper leak bill in the Lok Sabha. MPs are now increasingly using Gen Z phrases and speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
17: Modi clocked it and provided a legislative solution.
18: आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो. Fear of missing out.
19: पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का. राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया.
21: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है.
22: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, MPs are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation.
17: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism.
18: 37 din tak to ye jantar mantar nahi gaye, to inko MIA ho gaya. MIA kya hai? MIA missing in action. Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Are bacche yahan par andolan kar rahe hain. हम क्या कर रहे हैं काम चले गए पीएम आवास पर अरे सुनो आगे आगे आगे
23: आप अपना समाप्त
18: फोमो होने के बाद फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलू हुआ डेलुलू
22: द आउटरीच गोज बियॉन्ड पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी हैज बिकम अ टॉकिंग पॉइंट विद रील्स ऑफन पोस्टेड लेट एट नाइट टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट अमंग द यंग यूजर्स From digital campaigns to youth-focused messaging, the target audience is unmistakable. India's Gen Z. The urgency isn't just about optics. The nationwide students' protest over exam paper leaks have highlighted a new political reality. Young Indians are no longer passive observers. They are demanding transparency, accountability, better education, and more jobs. And they are shaping the national conversation. For political parties, the message is clear. Winning elections is no longer just about traditional vote banks. Mobilizing Gen Z could be just as important. A generation raised on smartphones, social media, and instant access to information is becoming one of the country's most influential electoral forces. With Gen Z set to become India's largest adult generation before the next general election, every major political party is recalibrating its message. The battle for India's future may well begin with the battle for its youngest voters. Bureau Report, NDTV.
4: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. Lots more lined up for you.
0: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
2: This car makes no sense, yet it makes every sense.
23: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Welcome back. In other news, the Mekadatu Dam project has once again triggered a fresh political and legal flashpoint between Karnataka and Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has now written to Prime Minister Narendra Modi objecting to the centre's recent statement in Parliament that Karnataka does not require prior consent from downstream states to build a structure across the Kaveri. Calling the reply legally flawed, Vijay has now sought its withdrawal and three key assurances from the centre. Meanwhile, Karnataka government is also mulling an appeal against the Kaveri Water Regulation Committee's direction to release 3,000 cusecs of water daily to Tamil Nadu.
24: It is wrong. The perception of the centre is wrong because internationally, the lower riparian states or countries should be consulted before making any change or any construction, additional construction in any river. That is the international law. See, even here we have Indus River passes through Pakistan, but it comes to India. At one point it crosses Pakistan. Pakistan can they build a dam and stop the water? They can't do it. So international law should be applied everywhere. Here, if they want to do any construction in Mekadatu, they should have consulted the Tamil Nadu, Pondicherry and Kerala states.
25: CWMA, a tribunal tirmana mado munchitavagine Congress sarkara yatechvagi gagale neeranna haribiduvanta kelasa igagale madagide. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಅಂದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ
26: ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅವರು 3,500 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ನೀರು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಡಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಥರ 4 TMC ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
27: ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ?
26: 4 TMC ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
27: ಮುಂದಿನ
26: 15 ದಿನ ಮಡಿಯಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು CWMAಗೆ ಅಪ್ಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪೀಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ.
4: Well, the Kaveri water sharing dispute has once again flared up, triggering a fresh political confrontation in Karnataka. The state has now been directed to release 3,500 cusecs of Kaveri water to Tamil Nadu, even as concerns grow over depleting reservoir levels and also an emerging drinking water crisis in several parts of Karnataka. Karnataka government now will hold a meeting over this issue. BJP, meanwhile, has launched a scathing attack and has accused the Karnataka government of surrendering the state's interests, claiming that Karnataka is itself facing a severe drinking water shortage. BJP has now announced a huge protest in Mandya against the release of Kaveri water, alleging that the Congress government has failed to safeguard the rights of Karnataka's farmers and even the residents.
3: ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು.
5: ನಾಡಿದ್ದು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಾಗದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖೇನ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
6: Well, right after CWRC directed the Karnataka government to release the water to the neighboring state, almost 4 TMC of water there you have in the state. There's a fresh protest that are erupting now in Bengaluru. You have pro-Kannada outfits who are now demanding the state government to not release the water at any cost to the neighboring state, Tamil Nadu. In fact, they are all here with the banner. There's also a black ribbon that they have all tied it on their arms as well.
7: ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಶೇಕಡ 20% ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಬಾರದು, ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
6: ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೇ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಓಪನ್ ಇನ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್.
4: Well, for years, men's javelin has been all about one rivalry, Neeraj Chopra versus Arshad Nadeem. Two Olympic champions, two Commonwealth champions, two athletes who turned javelin into must-watch sport across South Asia. But at the Commonwealth Games in Glasgow, there's a new name shaking up the usual storyline. Take a look.
8: 63-23 at 92 in Rome, he said.
9: Sri Lanka's Ramesh Tharangapathirage has emerged as a genuine gold medal contender at the Commonwealth Games in Glasgow. His massive 92.62-meter throw this season is the longest by any Commonwealth athlete this year. He also finished ahead of Neeraj Chopra at the Doha Diamond League. So what looked like another Chopra-Nadeem showdown is now shaping up to be a three-way battle. Neeraj heads to Glasgow fully fit after missing the last Commonwealth Games in Birmingham through injury. His season's best is 85.69 metres, well short of the 90.23-metre national record he set last year. But numbers have never defined Neeraj. Championship finals have. Time and again, he's delivered when medals are on the line. Then there is Pakistan's Arshad Nadeem. The defending Commonwealth champion still owns the Olympic record with that incredible 92.97-metre throw in Paris. Since calf surgery, he's competed sparingly, but Nadeem has made a habit of peaking when it matters most. Rohit Yadav and Yashvir Singh joined Chopra, giving India three athletes capable of making the final. No other country arrives with that kind of strength in numbers. And one more factor could influence this contest, the Scottish weather. Wind can add precious meters or steal them away. In a competition where medals could be decided by centimeters, reading the conditions may be just as important as reading the opposition. The qualification begins on 30th of July and the final will be on 31st at the Scotstoun Stadium. While everyone expects another chapter in the Chopra-Nadeem rivalry, Glasgow could have a different ending in mind. Rika Roy for NDTV.
4: With that, we slip into a very short break. Thanks for watching NDTV 24/7. Good night. See you tomorrow.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered.
2: Welcome back. You're watching NETV 24/7 with me, Raisha Sehgal. There's lots lined up for you on the show, but first, the headlines. Anti-paper leak bill passes in Lok Sabha. Bill cleared by voice vote amid heavy opposition sloganeering. Rajya Sabha hurdle for reform bill next. BJP and Rahul lock horns over use of pellet guns. Rahul asks who issued orders. BJP says SDMs gave orders on ground. LOP refuses BJP's demand for apology over accusation. Kangna on warpath against Gen Z tells women don't get influenced by feminazis. Labels protesters in abuse videos as gutter chap, immoral and vulgar. Centre submits response in Parliament on AI-171 crash probe, says Boeing's examination of the Dreamliner's fuel control switch locking mechanism found no abnormality. Assam flood death count rises to 75, over 3 lakh people still affected. Damage reported to houses, cows, sheds, schools and even Anganwadi centres. All right, fireworks erupted in Parliament today as BJP and opposition versus the banter between both of them continued over the students' protest. However, amid heavy sloganeering, the exam reform bill was passed by voice vote. Rahul Gandhi said that every Indian should be proud of what India's youth were able to achieve, adding that even the BJP should respect the expression of the youth. Rahul also slammed RSS, accusing them of destroying the education system and choosing selective history for students to read. The LOP also questioned Shah's absence from Parliament and demanded an apology from the government over police violence, while also alleging that he was not given enough time to speak. Meanwhile, the BJP has now hit back at Rahul for the use of unparliamentary language, asking if he called the protesting students idiots. The BJP also claimed that Rahul was given enough and more time, but he could not put his point forward.
3: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
4: उन्होंने आक्षेप लगाया कि I was not allowed to speak. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार-बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
3: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
4: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं।
5: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ordered it, he is culpable. There is no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go.
4: Maafi mango Rahul Gandhi. Maafi isliye mango kyunki aapne bhram phailaya. Aapke bhram ke karan desh mein phir se arajakta phailaye, phir se phail jaye. इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया, सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
2: BJP MP Kangna Ranaut remains in the news over her controversial remarks against the Gen Z protesters, specifically her attack against young women. Now, with a huge backlash and then her response and counter-response as well, she called out protesters using abusive language and said that we had so much pressure on millennial women to be dignified. Why do we have to give that burden to this generation, the Gen Z women? This comes after she questioned the upbringing of the protesters, saying that she had never seen so much ugliness in one place and made controversial comments specifically about young Hindu women, alleging that they were ugly and corrupt and cannot be homemakers either, claiming that they were involved in drugs and body counts. Already, opposition parties have now questioned her statements, criticizing her for making such sweeping generalizations against young people. The Cockroach Janata Party has hit back sharply. CJP spokesperson Saurav Das dismissed Kangna's remarks, saying that the party does not take her seriously and claiming that even BJP leaders don't take Kangna seriously at all.
6: मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है, लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं, बच्चे उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं।
7: बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
8: उनको कौन सीरियसली लेता है?
7: जी बताइए, ये बताइए कंगना रनौत ने भी जेन ज़ी को लेकर
8: उनको कौन सीरियसली लेता है?
7: जी बताइए।
9: देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली लें? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है, उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहां पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बनके। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है, वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था।
10: भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनौत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में, सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मारपिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया।
11: मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर यू नो तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आपका जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर यू नो मायने रखता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं।
2: Well, this is not the first time that Kangana has passed such controversial remarks. Let's now take you through her previous statements. First up, in 2024, she passed out a statement. Let's now tell you about Kangana's remarks. Farmers' agitation could have led to a Bangladesh-like situation. The BJP then rebuked. Now, this is happening in August 2024. BJP says Kangana's remark, not the opinion of the Bharatiya Janata Party. Apart from that, she says bodies were hanging and rapes were taking place. BJP has distanced itself from the statements given out by Kangana Ranaut. BJP says BJP expresses disagreement, with Kangana's remarks. She goes on to pass more such controversial statements. In yet another incident, she says China, America, foreign powers at work. BJP again distances itself, says Kangana not authorized to make statements on policy issues, especially that of the Bharatiya Janata Party. Apart from this, these are some of the few statements which Kangana Ranaut has made, which are extremely controversial, and how the Bharatiya Janata Party has also distanced itself. But there's more. 1947 freedom was bheek. To that, BJP says Kangana's remarks insult to freedom fighters and sacrifice. There is more to the list. The next statement, she says, real freedom came in 2014 with Modi government. BJP says nobody has a right to pass negative remarks on freedom fight. And these are the list of few statements. And it just shows you how the Bharatiya Janata Party has constantly distanced itself from such controversial remarks by Kangana Ranaut. Well, the BJP has now launched a fresh social media campaign which is aimed at connecting with Gen Z. And that is through a new promotional video. In this video, the latest addition to the campaign came from the BJP's Haryana unit, which released a reel featuring a conversation between a group of youngsters in a gym about the student protest at Delhi's Jantar Mantar. The campaign says development that remained stalled for decades is now moving ahead rapidly under Prime Minister Modi's leadership. In an apparent reference to the recent resignation of Dharmendra Pradhan, the video says that someone's resignation is not a personal victory for any individual, but a symbol of the strength of democracy.
12: Dude, kuch bhi ho, hume rukkar past se inspiration leni chahiye. You haven't even clocked, but India was like when you were 10.
13: Sir, aap to bilkul mere dad ki tone mein bol rahe ho. Tum logon ne old India dekha hai.
14: बॉम्ब धमाके आतंकी हमले करप्शन की हेडलाइंस ये वो
12: अरे गलत भी तो नहीं कहते तुम्हारे पेरेंट्स आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फोन है घर से निकलते ही सामने मेट्रो है वेकेशन पे जाना हो तो देहरादून एक्सप्रेसवे है हाई स्पीड ट्रेन्स हर छोटी छोटी जगहों पर भी एयरपोर्ट्स पढ़ने के लिए इतने सारे IIT IIM एम्स इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ मेडिकल सीट्स इतना बिल्ड करने में पहले देश को 50-50 साल लग जाते थे दो दो जनरेशन निकल जाते देश मजबूत हाथों में है तो उसका पूरा फायदा उठाओ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बनाने में
15: क्या मजबूत तो फिर रेजिग्नेशन क्यों दिया
12: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको
2: All right, this is the center's Gen Z outreach. Let's now tell you about what all strategies the center taken. First up, social first strategy. Here, we talk about the Gen Z style communication of the government. The Prime Minister is perhaps seen using IG style videos as well. There's also sitcom references and gym banter. You just saw that video being released by the Haryana BJP cell. and also interactive content. Moving on, let's now specifically tell you about Prime Minister Narendra Modi's digital outreach. First up, selfie style videos, which we've seen so many that the Prime Minister has been uploading. It is perhaps focused on outreach towards the youngsters, towards the students. Social media engagement is also in focus, especially through Instagram. So what perhaps is the government's digital playbook? First up, IG first outreach, Instagram friendly outreach. Second, youth focused messaging. And third, shareable content as well. Well, but from the parliament speeches to Instagram reels, India's political class is now speaking a new language, the language of Gen Z. As the anti-paper leak bill was passed in the Lok Sabha today, MPs are now dropping Gen Z slang. Take a look.
16: अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन
17: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको एमआईए हो गया एमआईए क्या है एमआईए मिसिंग इन एक्शन आंदोलन क्यों किया आपने उनको फोमो हुआ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट
18: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट